103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर सन 2004।

26। इस समय सुबह के 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला

0: व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

प्रार्थना शब्दों की माला नहीं बल्कि मन की वो शांति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। हमारा शांत मन ब्रह्मांड में व्याप्त अथाह ऊर्जा को ग्रहण कर अपने भीतर ज्ञान की लौ को प्रज्वलित कर अपने अंदर समाये अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर स्वयं को आलोकित कर लेता है। जब मन की शांति अपने चरम पर होती है तब मान लो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, और यही वो समय होता है जब हमारी सारी इच्छाएं सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती है और मन मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है।

चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी की इस आराधना के साथ।

माँ जगदम्बा की भक्ति में वो शक्ति है जो संसार में आने वाली हर विपत्ति से मनुष्य की रक्षा करती है। तो आइए हम सब मिलकर भी गुणगान करें उस जगत जननी माँ जगदम्बा का।

राम नाम के जाप में वो मधुरता है जो कानों में भक्ति का रस घोल देती है। तो आइए हम सब भी गुणगान करें राम नाम का।

श्रोता, इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 होने को है, ये सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि दैव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। श्रोताओ, सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग आप सुन पाएंगे 7:40 पर। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान पाएंगे सुबह 8:00 समाचार प्रभात में, और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। 9:10 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे सुबह 9:50 पर। इसके अलावा हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं सुबह 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। ये समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाते हैं। सुबह आप सुनेंगे 10:00 गीतों का कारवां कार्यक्रम, जबकि 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं पहाड़ों के सुर कार्यक्रम का। कवालियां आज आपको सुनवाई जाएगी सुबह 11:05 पर। 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और दोपहर 12:00 आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम सैनिकों के लिए। महिलाएं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी सुन पाएंगी दिन में 12:30 पर। दोपहर 1:00 हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का।

हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होती है शाम 5:10 पर, जिस पर आप सुनते हैं कुछ गैर फिल्मी भजन आज आप सुनेंगे, और 5:25 पर युवा दोस्त सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनेंगे 6:05 पर। मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे शाम 6:30 पर। किसान बागवान श्रोता सुनेंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम 7:10 पर। रात्रि 8 आप सुन पाएंगे विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस, और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। समाचार संध्या का प्रसारण रात्रि 8:45 पर किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाता है, और रात 9 आप सुन पाएंगे News@9। 9:15 पर होगा एक ही कलाकार कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे गीतकार कुलवंत जानी के लिखे हुए कुछ गीत। चर्चा का विषय ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 सुनिएगा दिल्ली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई गेम्स 2026, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर सुनना ना भूलिए

सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यद्यपि भारतीय सेनायाः कश्मीरस्थितस्य चिनारकोरे इत्यनेन मृतस्य भयोत्पादकस्य परिचयः न प्रकटितः। तथापि अधिकारिणः तं सुलेमान शाह अथ मूसा इति नाम्ना अभिज्ञातवन्तः। यः पाकिस्तानस्थस्य लश्करे तैयबा इत्यस्य अत्यन्तम् अपेक्षितः भयोत्पादकः आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले चिनारकोरे इत्यनेन उक्तं यत् बडगाम नगरस्य यूस्मर्ग इत्यस्य समीपे कोरा क्षेत्रे ऑपरेशन कोराग संचालितम् आसीत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हम तैयारियां इतनी मजबूत कर लें कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहुर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उपमंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। विशेष शिविरों का अगला दौर अगले महीने की 7 और 8 तारीख को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि दिल्ली में अब तक 4 लाख से अधिक सुनवाई की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के चल रहे SIR अभियान के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi, Mr. Singh said that the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
2: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the presence of Indian warships in South China Sea, Mediterranean, Atlantic Ocean demonstrates the country's blue water force capability.
4: He also commended the Indian Navy for maintaining a high level of combat readiness, noting that it is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. With Priya Mondal, Netika Gupta, Akashwani News, Delhi.
3: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Toor, Urad and Masoor at minimum support price.
5: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Toor, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
3: Home Minister Amit Shah is visiting Punjab today to flag in Nasha Mukt Punjab Yatras in Jalandhar. The Home Minister will also hold a gathering on the occasion. The Yatras, which were launched by BJP President Nitin Naveen on 18th of this month from Pathankot, have covered a distance of 4,000 kilometers in all the 117 assembly constituencies in 13 days. The objective of Yatras was to transform the fight against drugs in Punjab into a people's movement. In Jammu and Kashmir, a top Lashkar-e-Tayyaba terrorist was killed in an encounter with security forces in Budgam district yesterday evening. The terrorist was identified as Fauzi Musa, a top Lashkar-e-Tayyaba commander. In a social media post, the Indian Army's Chinar Corps said the operation was carried out jointly by the Army, Police and the Central Reserve Police Force in Korag near Yusmarg in Budgam. The Election Commission has organized special enrollment camps at colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. A large number of students visited the camps yesterday to seek information on the Special Intensive Revision or SIR and to obtain or submit electoral forms. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. In men's cricket, India will face the West Indies at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati today in the second ODI of the three-game series. The match will begin at 2 p.m. Indian Standard Time. After a convincing 8-wicket victory in the opening match in Thiruvananthapuram, India aims to extend their lead in the series and establish an insurmountable advantage. With Virat Kohli and Shubman Gill each scoring a century in the first ODI, the hosts are confident going into the second game and looking to continue their strong batting performance. And that is the end of this news bulletin.
6: एक सौ तीन दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं. सुबह के 7:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम.
7: सुबह सुहानी.

सुबह सुहानी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, के साथ ही साथ आपसे शेयर करते हैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस भी जो आप सभी के लिए फायदेमंद रहती है। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, जहां एक खूबसूरत सी सुबह दस्तक दे रही है आपकी दहलीज पर, साथ ही आपके लिए लेकर आई है कुछ मीठी मीठी ठंडी हवा के झोंके जो आपको एहसास दिला रहे हैं प्रकृति की सुंदरता का भी। तो चलिए, हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे सुविचार के साथ। दोस्तों, एक अच्छा रिश्ता वही है जहाँ दोनों की भावनाओं को महत्व मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता बनता है, वो चाहे दोस्ती का हो, साथी का हो या फिर प्यार का, हर रिश्ते की नींव पक्की रहती है विश्वास के साथ और एक दूसरे की भावनाओं को वैल्यू करने से। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी रिश्तों की खूबसूरती बरकरार रहती है। तो चलिए, हम भी अपने रिश्ते को यूं ही बरकरार बनाए रखते हैं और आप सभी से जब हम आपके मनोरंजन का वादा करते हैं, तो आपके लिए प्यारे प्यारे से गाने प्ले करना तो हमारा फर्ज बनता है। आप सभी को सुनवा रहे हैं ये गीत और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम सुन रहे हैं सुबह सुहानी।

श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। और दोस्तों, हम यूं तो अक्सर आपसे कहते रहते हैं कि पीछे मुड़कर ना देखो, जो बीत गया वो कल बन गया, लेकिन उस गुजरे पलों में कुछ दिन कुछ बातें ऐसी रह जाती है जिनका महत्व कभी भी कम नहीं होता। तो चलिए आज भी बात करते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं की जो आज के इस दिन को और अधिक खास बना देती है। जी हाँ, आपको बता दें कि 30 सितंबर 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने हैदराबाद के प्रसिद्ध गोलकुंडा किले पर कब्जा किया। वहीं दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और अमेरिका के सबसे बड़े महानगरों में से एक न्यूयॉर्क शहर की स्थापना 30 सितंबर के दिन साल 1898 में की गई। आपको बता दें कि शतरंज के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा महारत पाने वाले 5 बार के विश्व चैंपियनशिप शतरंज की चैंपियनशिप को जीतने वाले प्लेयर विश्वनाथन आनंद द्वारा 30 सितंबर साल 2003 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की थी। वहीं गायकी के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करने वाले पार्श्व गायक मन्ना डे को साल 2007 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2002 में प्रदान किया गया। जी हाँ, 2009 में ये प्रदान किया गया। वे भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक सम्मानजनक पुरस्कार पाने वाले एक सिंगर रहे हैं। चलिए अब कार्यक्रम में बात करते हैं उन खास शख्सियतों की जिनका आज जन्म हुआ है। जी हाँ, 30 सितंबर 1837 में जन्म हुआ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धाराम शर्मा का। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म हुआ 1922 में आज ही के दिन। 30 सितंबर 1970 में जन्म हुआ भारत की शॉर्ट पुट व जेवलिन थ्रो खिलाड़ी दीपा मल्लिक का। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सुबह सुहानी और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप सभी तक हम पहुंचाते रहते हैं संगीत की मिठास भी। तो इस जो है वो बात को बरकरार रखते हुए आप सभी के लिए प्ले करने जा रहे हैं एक और बेहद ही प्यारा सा गीत। एंजॉय कीजिए और दिल से यूं ही बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर। सुनते रहिए सुबह सुहानी प्रोग्राम।

0: 499 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ। और देखिए, हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है सुबह के 7:24:50। जी हाँ दोस्तों, हर दिन की अपनी कुछ ना कुछ खूबसूरती रहती है और इन दिनों के महत्व को हम कभी ना कभी सेलिब्रेट भी करते ही रहते हैं। तो आज एक ऐसा ही खास दिन हम आज मना रहे हैं। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। जी हाँ, इसे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भी कहते हैं। और आप सभी को बता दें कि ये दिन अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को आपस में जोड़ने वाले अनुवादकों के काम और सम्मान के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने भाषा पेशेवरों के योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए साल 2017 से इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। ये दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत भी माना गया है।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम और आज प्रोग्राम में समय हो चुका है अब आप सभी से कुछ ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स शेयर करने का। जी हाल से आपको बता दें कि अमेरिका में तीसरे देशों के निर्वासन का रास्ता फिर खुला, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से बदल रही है और भारत भी इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए अपनी तैयारियां मजबूत कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने पुलिस व अन्य सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20% कोटा को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में शुरू हुआ मंथन। बात करें खेल समाचारों की तो एशियन गेम्स में महिलाओं ने 400 मीटर रिले रेस में भारत को स्वर्ण पदक ले लाया। वहीं नीरू धांडा ने ट्रैप शूटिंग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया और पदक तालिका में भारत कुल 50 पदकों के साथ 10वें स्थान पर पहुंचा। बात करें क्रिकेट की तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, ये तो थी कुछ आज की ताज़ा तरीन न्यूज की अपडेट्स और कुछ ही पलों में लौटेंगे मौसम के हाल के साथ। फिलहाल आप सभी के सुनवाएंगे ये मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजों में ये गीत।

जी हाँ लिसनर, सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और चलते चलते आपको मौसम का हाल भी बताते चले, आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं के सक्रिय होने के कारण दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो आज प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। वहीं बात करें धर्मशाला शहर की, तो आज यहाँ पर दिन की शुरुआत खिली खिली धूप से हुई है और यहाँ पर सुबह शाम हम जो है वो हल्की हल्की ठंड का जो है वो महसूस करने लगे हैं। वेल, इस बनते बिगड़ते मौसम में हम आपका जो एक ही सलाह देना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला का प्रसारण।

0: श्रोता, इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।
1: सुबह सुहानी।
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग। श्रोताओं, आज के शुभ ब्याग कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं राजेंद्र कुमार शर्मा की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ।

0: of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
4: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता, इसी के साथ हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से जानने के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

0: मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभूबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाईयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, NCERT की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। इंडियन नेवी टू इंडक्ट रिकॉर्ड 18 वॉरशिप्स इन 2026, मार्किंग लार्जेस्ट सिंगल ईयर फोर्स एक्सपेंशन इन इट्स हिस्ट्री। Most wanted Lashkar e Tayyaba terrorist killed in encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecast heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Keralam and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has described 2026 as a historic year for the Indian Navy, with plans for the induction or commissioning of 18 warships during the year. Addressing the second edition of the Indian Navy's biannual Commanders' Conference 2026 in New Delhi, Mr. Singh said that the developments reflected the growing maturity of India's domestic naval shipbuilding ecosystem, underlining the Navy's efforts towards achieving self-reliance in the defence sector. The Defence Minister emphasised that the Indian Navy's warship production ecosystem is now meeting global benchmarks. He said the warships commissioned recently contain over 75% indigenous content. The minister called for a significant upgrade of India's maritime surveillance architecture, recognizing the importance of existing systems. He added that the growing volume and complexity of maritime traffic require enhanced analytical capabilities. Highlighting the government's commitment to the modernization of the Navy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, Mr. Singh stated that the Indian Navy serves as a strategic anchor in the vision of Viksit Bharat 2047. The Election Commission has organized special enrollment camps at colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. A large number of students visited the camps yesterday to seek information on the Special Intensive Revision or SIR and to obtain or submit electoral forms. The camps will continue today as well. The EC said that block-level officers or BLOs present at these camps are guiding the students to fill their forms, collect the filled-in forms and also resolve queries related to SIR. Another round of camps will be organized on 7th and 8th of next month. The poll body requested all young electors to avail this opportunity for enrollment of their names in electoral rolls and participate in the democratic process. More from our correspondent.
5: Special camps will also be held at all polling station locations on 4th and 11th of next month for enrollment of all categories of electors. The commission said that new applicants attaining the age of 18 years on or before 1st October this year should apply in Form 6 for inclusion of their names in the electoral roll. EC noted that as of now, more than 4 lakh hearings have been conducted in Delhi. The election commission also said that electors who have received notices for unmapped or logical discrepancies will be assisted by BLOs who will visit their homes to collect documents. EC has revised the schedule for the ongoing special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The period for filing claims and objections will continue till 30th of next month, while the final electoral roll will be published on 4th December this year. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
8: In Jammu and Kashmir, a top Lashkar-e-Tayyaba terrorist was killed in an encounter with security forces in Budgam district yesterday evening. The terrorist was identified as Fauzi Musa, a top Lashkar-e-Tayyaba commander. In a social media post, the Indian Army's Chinar Corps said the operation was carried out jointly by the Army, Police and the Central Reserve Police Force in Korag near Yusmark in Budgam. Musa, who was wanted for his involvement in several attacks in Jammu and Kashmir, he escaped an encounter in the Yusmark Hills on September 5th, in which his close aide Yasir was killed.
9: Lieutenant Governor of Ladakh V.K. Saxena flagged our first commercial air cargo consignment of lilium flowers grown in the Union Territory yesterday. Addressing the media, Mr. Saxena informed that the commercial cargo marks the beginning of a new chapter in Ladakh's agricultural history. Mr. Saxena said the horticulture floriculture project was started

इंद्र जी हाँ, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और यहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रोग्राम गाने सुहाने। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए प्ले करेंगे कुछ प्यारे प्यारे से गीत और साथ ही साथ करेंगे कुछ मीठी मीठी सी बातें। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं जिस देश में गंगा रहता है फिल्म के इस गाने के साथ। एंजॉय कीजिए और दिल से यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम चल रहा है गाने सुहाने।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहानी प्रोग्राम। गाने ऐसे जो कभी दिलों की धड़कन को बढ़ा देते हैं तो कभी दिल को सुकून पहुंचा देते हैं।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
4: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
3: RBI कहता है जानकार बनिए,
4: सतर्क रहिए।
5: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
1: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
6: बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, जहां पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहाने प्रोग्राम। प्रोग्राम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में। फिल्म है बिच्छू।

0: इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
1: हाँ, वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
0: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
2: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
3: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
4: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
3: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa.
1: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
6: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
7: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
6: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
7: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive

गाने सुहानी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और प्रोग्राम का अगला जो गाना आप सुनने जा रहे हैं उसे हमने लिया है विरासत फिल्म से। इस फिल्म में संगीत दिया है अन्नू मलिक ने और आवाजें हैं कुमार शानू और के एस चित्रा की।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: गाने सुहानी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम के आखिर में

0: श्रोतो, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गाने सुहाने यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है, 9:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो

0: मुखी सोलवे फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ एसबीआई के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्य कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
2: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
1: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। आईबीसी के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनसीएलटी के समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए एनसीएलटी का प्रावधान है। वहीं आईबीसी के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई की स्थापना की गई। आईबीबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक आईबीसी के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया। लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। आरबीआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, आईबीसी और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
3: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आप इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था। लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था एनडीए, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था। उसी टाइम में आपको एफआरबीएम कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपोर्ट जो आदम जानते हैं, जहां से वो सब लोग उसको देख के बैंक बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इशू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे। तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4-8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-8 में एक फिनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसे ही फिनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-9 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिजिकली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था। आपका अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था
0: जी।
3: हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया, बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था। लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया, इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स वो एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था और लोन्स को रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बैंक्स का जो था प्रोविजन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था, और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट में किया था, और उसके बाद उनका साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। तो इसके चलते क्या हुआ, 3-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसमें एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितने उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आए हैं उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं। उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को रिकॉन्सोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017

0: 2018 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़, सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम एक्यूअर करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिनों नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीओ रेशियो उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है, 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 में 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% का आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है। और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द इक्यूआर, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे, एसएमई जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंक सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये एसएमई क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है, एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपके पहले बोला, उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसिल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया। एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल, और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए, और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था, और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था, प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30% सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स में उस पर बिगड़ गया था। रोड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपको बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाए, एक्यूआर रिव्यू, इसको हम बोलते हैं ट्रिपुलर, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट में 3 ट्रिलियन रिकैपिटलाइजेशन किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरोप करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो आप बीच बीच में आप काफी टाइम आपने ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली एक ही उगर था। ये लोन जो पहले था, ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ। जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज वो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि एक्यूआर इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया।

0: दो तीन साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फूटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फूटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18-19% में जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, इसका रीजन हम उस रिफॉर्म्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, हमने एसएमई में भी काफी रिफॉर्म्स किया, हम बाकी जो सेक्टर्स लोन्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म्स किया है, जो लोन्स का जो रूल्स है उसको भी हमने अच्छा किया, बैंक्स का अंडररैटिंग स्टैंडर्ड काफी इम्प्रूव हो गया। तो सारे चीज अगर हम मिला, सारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी सब डिजिटाइज हो गया। अगर आपको आज का दिन आपको अगर कुछ लोन चाहिए तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो सारे चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया, एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्रेडिट नीड्स।
1: आपने एसएमईज का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप एसएमई सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में भी बताएं, और आईबीसी के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया।
0: देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो मैं आईबीसी लेके आता हूँ। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आए थे, और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मेकानिज्म में डालेंगे, उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे, वो करते नहीं था। तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी के हाथ में चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखे, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप एसएमई सेक्टर को बात करें, एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ECLGS स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे उसको लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ECLGS लेके, आपको अगर पता है कि कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ECLGS में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है, और उसके साथ एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। एक तो फॉर एग्जाम्पल जो एसएमई सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे एसएमई सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे एमएसएमई सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आपका अगर नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ एसएमई सेक्टर का 24% चल रहा है। एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन एमएसएमई सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप देन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो यही चीज सबसे अच्छा हुआ है एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था वो फॉर्मलाइज नहीं था, अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच में एक खबर आते है कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था। हाँ ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच में जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज है, पैंडेमिक का पहले पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत

0: अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद सर 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें, और कुछ सुधार लेके आए, और ज्यादा कोर्ट बनाए, और थोड़ा जैसे मेकानिज्म है थोड़ा ठीक से देखे। तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं फ्यूचर में इसका हम इम्प्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है। एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं IBBI यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLAT और NCLT की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
0: देखिए ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप टेबल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का, कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखे कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठाया है 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा 14 से 15 लाख करोड़ कैश है। तो उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रिपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है, और पैसा भी उठा सकते हैं, और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा ट्वाइन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
1: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
0: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका हम एवरग्रीनिंग बोलते। जब आपको पता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका हम एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का आज जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है, और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
1: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया, बैंक्स कोई बोलते थे हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे। इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते, तो वो लोन वेवर खत्म हो गया। क्योंकि अभी बहुत सारे एग्रीकल्चर जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया, और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया। तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, अलाइव सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है, जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपोजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी पता नहीं है आज यूएस में क्या होगा, कल क्या होगा, आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया, पर दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है, और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में, ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
1: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके।
0: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था, और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था, तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था, उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिस्कल डिफिसिट उसमें नहीं बढ़े थे, तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसमें आई थिंक ये मुझे इतना याद है 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में, तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था, इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है कि रिकैपिटलाइजेशन तो होना था, रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था, इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, ये तो पहला बात है, और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है, तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक्स दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है, और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
1: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
0: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं कोई एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक एक साथ आते हैं तो रिगुलाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है, तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमीज इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कंसोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
0: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखे, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखे एक फिजिटल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपोजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा हो गए एफसीएल में, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का आपको पता है कि एफसीएल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 US बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिसे रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फर्स्ट, इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, AI का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं, और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में एक आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोला था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग, सो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो करंट जेनरेशन था 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स में, बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है, और ये एक प्रोसेस जो चलते रहेगा, तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: एक सौ 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
4: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य

0: की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa. हम आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शफाकत अमानत अली की आवाज में जब वी मेट फिल्म से ये गीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 होने को है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत प्रगति 50 शहरों में चयनित हुए शिमला और धर्मशाला, अपनाए जाएंगे स्वच्छता के उच्च प्रदर्शन मानक। नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन में सोलन जिले की 22 महिलाएं सीखेगी उन्नत कृषि और दुग्ध उत्पादन के गुण।

0: चयनित शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे देश के बाकी हिस्सों के लिए एक आदर्श स्थापित होगा। इन 50 शहरों में हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान संघ द्वारा नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोलन जिला से भी 22 किसान महिलाएं शामिल हो रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि इसके माध्यम से उन्हें उन्नत कृषि सहित दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सकेगी।
1: महिला किसान संघ का एक कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं को उनकी आजीविका के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के लिए बहुत आहित हैं, इससे हम अपनी खुद की आजीविका कर सकते हैं। खेतों में किस प्रकार से खेती, मिश्रित खेती करनी है, वो भी हमें वो बताएंगे। दूध के द्वारा हम किस प्रकार अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम UNO के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे।
2: कल जो है हम UNO द्वारा 2026 में महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, तो इसकी तैयारी हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज जो है 22 महिला है दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही है, वहाँ जाके हम UNO द्वारा जो भी हमें शिक्षण दिया जाएगा उसको हम सीख लेंगे और अब हर गांव में उस प्रशिक्षण को हम सुचारू रूप से हर महिला को देंगे, जिससे कि उनकी मासिक जो है आमदनी बढ़े।
0: प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है। ये दल आज कुल्लू जिला के बंजार में हुए नुकसान का आकलन करेगी। आज देर शाम ये दल शिमला में मुख्य सचिव सहित अन्य सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक करेगी। अपने दौरे के अंतिम दिन कल ये दल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से अब पात्र लाभार्थियों को देश भर में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिल रही है। हमीरपुर जिला की खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल कुमारी ने बताया कि ये विशेष सुविधा प्रवासी श्रमिकों और रोजगार के कारण अपने गृह क्षेत्र से बाहर रहने वाले परिवारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से अब परिवार का कोई भी सदस्य देश के किसी भी शहर अथवा राज्य में राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कुल्लू जिला में युवाओं के एक समूह द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को लेकर एक विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों से युवा पहाड़ों में सिर्फ सैर करने नहीं बल्कि यहाँ की चुनौतियों और जन समुदाय कार्यों में भागीदारी करने पहुंच रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
6: युवाओं के एक समूह द्वारा हिमालय क्षेत्र में एक अलग ही ट्रेंड शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये युवा गांवों को पैसों से नहीं बल्कि अपनी सोच, समय, हुनर और काम करने की क्षमता से अपनाने की पहल कर रहे हैं। यहां गांव को अपनाने का अर्थ आर्थिक जिम्मेदारी लेना नहीं बल्कि उस जगह के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें युवा अपनी क्षमता के अनुसार लगातार योगदान दे सकें। चंडीगढ़ के निखिल शर्मा की अगुवाई में शुरू हुई ये पहल देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं को हिमालयी समुदायों से जोड़ रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ पहाड़ों की सैर करना नहीं बल्कि वहां के लोगों के बीच जाकर उनकी चुनौतियों को समझना और अपनी क्षमताओं के जरिए पर्यावरण एवं समुदाय से जुड़े प्रयासों में योगदान देना है। इसी कड़ी में जिला की सैंज घाटी के मनियाशी, देवरी और सराहन गांव में युवाओं ने स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को लेकर एक पहल की। स्कूलों में युवाओं ने विद्यार्थियों के साथ प्लास्टिक कचरे, उसके पर्यावरण पर असर और वेस्ट मैनेजमेंट पर संवाद किया।

0: खेलों और इंटरैक्टिव गतिविधियों के जरिए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया। वहीं ड्राइंग और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से छोटे बच्चों को स्वच्छ गांव और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: डाक विभाग के गौरवपूर्ण इतिहास और कार्यशैली के साथ ही युवा पीढ़ी तक विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने के लिए शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में डाक टिकट संग्रह फिलेटली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस प्रदर्शनी में वर्ष 1840 से लेकर आज तक के डाक टिकटों के जरिए ऐतिहासिक जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य डाक टिकट संग्रह की कला को पुनर्जीवित करना है, जिससे आम लोगों, विशेषकर युवाओं व बच्चों को प्रत्येक डाक टिकट के पीछे छिपे समृद्ध सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक मूल्यों को जानने का अवसर मिल रहा है। प्रदर्शनी में बच्चों व युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। लाहौल स्पीति जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर में बाल अधिकारों व बाल सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष शशि किरण और SHO शेष राज ने शिविर में बच्चों को साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों, पॉक्सो अधिनियम, गुड टच बैड टच और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। इस शिविर में 150 से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों ने भाग लिया। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव से 21वें पायदान से तीसरे स्थान पर पहुंचा हिमाचल। हिमाचल दस्तक के शब्द है, सीएम ने हाईकमान के सामने रखा शिक्षा का मॉडल। दैनिक जागरण के अनुसार हाईकमान से सुक्खू बोले, कुलपतियों की नियुक्ति में लोक भवन की अड़चन। अमर उजाला की एक खबर है, एक मंत्री को ड्रॉप करने की चर्चा के बीच हाईकमान से मिले सुक्खू। दैनिक भास्कर की एक खबर है, इस बार आधा रह गया सेब का कारोबार, पिछले साल हुई थी 2.25 करोड़ पेटियां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत प्रगति 50 शहरों में चयनित हुए शिमला और धर्मशाला, अपनाए जाएंगे स्वच्छता के उच्च प्रदर्शन मानक। नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन में सोलन जिले की 22 महिलाएं सीखेगी उन्नत कृषि और दुग्ध उत्पादन के गुण। प्रदेश में मानसून से हुए नुकसान के आंकलन के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल आज करेगा कुल्लू के बंजार का दौरा, देर शाम शिमला में मुख्य सचिव के साथ होगी बैठक। और कुल्लू जिला में युवाओं के एक समूह द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को लेकर की जा रही विशेष पहल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 PM। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
3: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। 103.4 MHz पर अब आनंद लीजिए गीतों का कारवा का। और अब आगे के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो दोस्त प्रवेश। दर्द फिल्म के इस गीत के साथ करते हैं अपने कार्यक्रम का आगाज। इसमें आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, गीतकार है नक्श लायलपुरी और संगीत दिया है खयाम ने।

0: Exa showroom and bring home your fronks today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Exa.
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दर्द का ये गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं से ये गीत, जिसमें आवाज़ दी है लता मंगेशकर और शबीर कुमार ने।

श्रोताओं, इसमें संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out.

0: Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे हैं गीतों का कारवा का।

श्रोताओं, अब आप सुन रहे हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का ये गीत, जिसमें आवाज दी है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया है आनंद।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवा। श्रोताओं, समय हुआ है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, अगला लोकगीत आइए अब मिलकर सुनते हैं सूरज सिंह की आवाज में।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नीना व साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत। अब हम आपको आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं वर्षा कटोच की आवाज में ये अगला लोकगीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश के 50 आदर्श शहरों के विकास के लिए प्रगति 50 पहल को शुरू किया है। इसका शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 24 राज्यों के ये 50 चयनित शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे देश के बाकी हिस्सों के लिए एक आदर्श स्थापित होगा। इन 50 शहरों में हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला को भी शामिल किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है। ये दल आज कुल्लू जिला के बंजार में हुए नुकसान का आकलन करेगी, जिसके पश्चात ये दल शिमला में मुख्य सचिव सहित अन्य सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक करेगी। अपने दौरे के अंतिम दिन कल ये दल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ एक बैठक करेगा। भारत सरकार महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान संघ द्वारा नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोलन जिले से भी 22 महिला किसान शामिल होगी। इस सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि इसके माध्यम से उन्हें उन्नत कृषि सहित दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सकेगी।
1: महिला काम संघ का एक कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं को उनकी आजीविका के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के लिए बहुत आहित हैं, इससे हम अपनी खुद की आजीविका कर सकते हैं। खेतों में किस प्रकार से खेती, मिश्रित खेती करनी है, वो भी हमें वो बताएंगे। दूध के द्वारा हम किस प्रकार अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम UNO के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे।
2: कल जो है हम UNO द्वारा 2026 में महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, तो इसकी तैयारी हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज जो है 22 महिला है दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही है, वहाँ जाके हम UNO द्वारा जो भी हमें शिक्षण दिया जाएगा उसको हम सीख लेंगे और अब हर गांव में उस प्रशिक्षण को हम सुचारू रूप से हर महिला को देंगे, जिससे कि उनकी मासिक जो है आमदनी बढ़े।
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से अब पात्र लाभार्थियों को देश भर में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिल रही है। हमीरपुर जिला की खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल कुमारी ने बताया कि ये विशेष सुविधा प्रवासी श्रमिकों और रोजगार के कारण अपने गृह क्षेत्र से बाहर रहने वाले परिवारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से अब परिवार का कोई भी सदस्य देश के किसी भी शहर अथवा राज्य में राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और मशीनरी आधारित बनाने की दिशा में सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों को विभिन्न कृषि मशीनरी पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर राहुल कटोच ने धर्मशाला में बताया कि कृषि मशीनरी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। उन्होंने बताया कि किसानों को पावर वीडर, थ्रेशर, क्रॉप वाइंडर जैसे विभिन्न कृषि उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। लाहौल स्पीति जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर में बाल अधिकारों व बाल सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष शशि किरण और SHO शेषराज ने शिविर में बच्चों को साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों, पॉक्सो अधिनियम, गुड टच बैड टच और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। इस शिविर में 150 से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों ने भाग लिया। डाक विभाग के गौरवपूर्ण इतिहास और कार्यशैली के साथ ही युवा पीढ़ी तक विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने के लिए शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में डाक टिकट संग्रह फिलेटली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। दो दिवसीय इस प्रदर्शनी में वर्ष 1840 से लेकर आज तक के डाक टिकटों के जरिए ऐतिहासिक जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। प्रदर्शनी की मुख्य उद्देश्य डाक टिकट संग्रह की कला को पुनर्जीवित करना है, जिससे आम लोगों, विशेषकर युवाओं और बच्चों को प्रत्येक डाक टिकट के पीछे छिपे समृद्ध सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक मूल्यों को जानने का अवसर मिल रहा है। प्रदर्शनी में बच्चों व युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
3: एक 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं कव्वालियां।

श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली कव्वाली आप सुन रहे हैं फिल्म लैला मजनू से, और इसमें आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी अज़ीज़ ने, और इनके साथ है अंबर कुमार, शंकर शंभू।

0: Relax. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: हंसते जख्म। जी हाँ श्रोताओं, ये है हमारी अगली फिल्म का नाम जिससे हमने ली है ये प्यारी सी कव्वाली, और इसमें आप आवाज़ सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओं, अब हम आपको अगली कव्वाली सुनाने वाले हैं मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, एस डी बातिश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। जी हाँ श्रोताओं, और फिल्म का नाम है बरसात की रात।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कव्वालियाँ। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
3: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
3: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
3: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
3: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
3: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
3: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
3: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी,
3: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
3: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
2: जी,
3: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
2: जी,
3: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
2: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
3: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
2: जी,
3: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
2: जी,
3: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
2: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
3: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
2: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
3: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
2: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
3: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
2: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
3: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
2: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
3: बिल्कुल, श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
2: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझकर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
3: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है
2: जी।
3: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
2: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
3: वो क्या?
2: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है, लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
3: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही
2: जी।
3: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
3: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
2: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये जरूर जाने।
3: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है, और वो ये कि
2: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
3: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
2: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
3: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
2: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देख तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सत श्री अकाल चाचा।
3: सत श्री अकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।
0: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
1: निर्मलजीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
0: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
1: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
0: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
1: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर, ये तो हमारा काम है।
4: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
4: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश देना। हाँ, पॉलिश देना। हाँ, अब देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
0: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
4: एक मिनट मान सिंह, तो मैं फिट होने दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
1: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
0: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे।

0: नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
1: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
0: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
1: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के 2-2 जहाज मेरे सामने हैं। जब तक मारूंगा नहीं, तब तक लौटूंगा नहीं।
4: दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया। अरे, ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के 2 और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।

0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
2: ओए कायरो, ओए भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
2: कंट्रोल रूम, दिस इज शेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेख देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं और यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।
1: आपकी चाय एक जुगाड़ है।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। रोजाना की तरह लेकर हाजिर हो गए हैं हम कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं विनोद राठौर और आशा भोसले की आवाज में गाए फिल्म बाजीगर के इस गीत के साथ।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म परदेस से, और इस गीत को गाया है सोनू निगम और हेमा सरदेसाई ने।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी।

रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहाँ बातों में अपनापन होता है, और मुलाकात वही यादगार होती है जहाँ दिल से दिल का रिश्ता होता है। नमस्कार श्रोता सखियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी प्रवेश। आज फिर आई हूँ आपके पास लेकर ढेर सारी बातें, कुछ आपके मन की, कुछ बदलते मौसम की, और कुछ उन छोटी छोटी खुशियों की जिन्हें हम हर रोज़ की भाग दौड़ में अक्सर महसूस करना भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि ज़िंदगी बड़ी बड़ी खुशियों से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी मुस्कुराहटों से खूबसूरत बनती है जो अचानक हमारे चेहरे पर आ जाती है। सुबह की पहली किरण हो, रसोई से आती चाय की खुशबू हो, घर के आंगन में गूंजती बच्चों की आवाज़, या फिर शाम को थके कदमों के साथ घर लौटकर किसी अपने का ये पूछ लेना, थक गई हो ना आज तुम, बस यही तो है ज़िंदगी की असली खुशी। और सखी, कभी कभी हमें किसी बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं होती मुस्कुराने के लिए। एक छोटी सी खुशी हमारे मन को खुशियों

से भर देती है। हम महिलाएं भी तो ऐसी ही होती हैं ना सखियों, सबका ख्याल रखते रखते अक्सर खुद को ही पीछे छोड़ देती हैं। हम लेडीज़ भी तो देखो ऐसी हैं ना, पर क्या कर सकते हैं भाई, किसी के लिए हम माँ हैं, किसी के लिए बेटी, किसी के लिए बहन और किसी के लिए पत्नी। और इन सभी रिश्तों को निभाते निभाते कभी कभी भूल जाती हैं कि हमारे भीतर भी एक मैं रहती है, जिसे थोड़ा प्यार, थोड़ा आराम और थोड़ी सी मुस्कान चाहिए। तो आज इस खूबसूरत मुलाकात में खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो तो बस चलती रहती है। तो क्यों ना हम भी आपके हर खूबसूरत पल के साथ मुस्कुराते हुए चलें। तो आइए आज के इस प्यारी सी महफिल में कुछ दिल की बातें हों, कुछ मुस्कुराहटें हों और कुछ ऐसे पल जो आपके दिल को थोड़ा और खूबसूरत बना दें। आप जुड़े रहिए, क्योंकि सुनो सखी में आज फिर बातें होंगी आपकी, मेरी और हम सबकी। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में, जहां अब हम आपसे बात करेंगे अपने आज के टॉपिक पर। जी हाँ, और आज का टॉपिक है, पारंपरिक पहनावे को कैसे बना सकते हैं आधुनिक फैशन। सखियों, कपड़े सिर्फ तन को ढकते नहीं, ये हमारी इस पहचान को भी सजाते हैं, और जब इस पहचान में आधुनिकता का रंग घुल जाए तो परंपरा भी बन सकती है फैशन की नई तस्वीर। सखियों, फैशन का नाम आते ही हमारे मन में नए डिजाइन, नए रंग और बदलते ट्रेंड की तस्वीर उभरने लगती है। लेकिन क्या फैशन का मतलब हमेशा नया खरीदना ही है? क्या आधुनिक दिखने के लिए हमें अपने पारंपरिक पहनावे को अलविदा कहना जरूरी होता है? नहीं,

बिल्कुल नहीं, बल्कि आज के दौर में तो फैशन एक खूबसूरत अंदाज है और ये हमारी परंपरा को संभालते हुए हमें आधुनिक टच भी दे रहा है। सखियों, हमारे देश में पहनावे की इतनी विविधता है कि हर प्रदेश का परिधान अपने आप में एक कहानी कहता है। कहीं साड़ी की खूबसूरती है, कहीं सलवार कमीज की सादगी, कहीं घाघरे की रंगीन छटा, तो कहीं पहाड़ी शॉल और पारंपरिक आभूषणों की अपनी अलग पहचान। ये पहनावे हमारी संस्कृति की धरोहर है। श्रोताओं, सोचिए माँ की अलमारी में रखी रेशमी साड़ी। रंग थोड़ा पुराना, लेकिन कपड़ा आज भी उतना ही खूबसूरत। दादी की पुरानी शॉल, जिसके हर धागे में एक कहानी छिपी है। किसी त्योहार पर पहने जाने वाले पारंपरिक गहने, जिन्हें देखकर लगता है कभी पहनूंगी, तो सखियों वो कभी आज क्यों नहीं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि परंपरा को उसी रूप में दोहराने के बजाय उसे अपने समय की भाषा में पहन लिया जाए। आज की लड़की साड़ी पहनती है, लेकिन उसका अंदाज अलग ही दिखता है। वो पारंपरिक दुपट्टा लेती है, मगर

0: फैशन जहाँ दो अलग अलग अंदाज मिलकर एक बिल्कुल नया रूप ले लेते हैं। अब साड़ी की बात करें तो ये सदियों से हमारे पहनावे का हिस्सा रही है, लेकिन हर पीढ़ी ने इसे नए अंदाज में पहना है। इसी तरह पारंपरिक कढ़ाई, बुनाई और प्रिंट को भी आधुनिक कपड़ों में शामिल किया जा सकता है। सखियों, आधुनिक फैशन का मतलब अपनी पहचान को छुपाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसे नए आत्मविश्वास के साथ सामने लाना होता है। आज हम श्रोताओं महंगे ब्रांड के कपड़े पहनकर भीड़ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने पहनावे में अपनी मिट्टी का रंग जोड़ देते हैं ना, तो हमारी एक अलग ही पहचान बनती है। सखियों, एक सादा कुर्ता हो और उसके साथ पारंपरिक शॉल, एक आधुनिक परिधान हो और उसके साथ कोई पारंपरिक आभूषण, बस अंदाज बदल गया और पहचान जो है वही रही। फैशन कभी-कभी खरीदने से नहीं, सोचने से आता है। हो सकता है जो चीज़ आपको कल तक पुरानी लग रही हो, वही आज आपके लुक की सबसे खास चीज़ बन जाए, क्योंकि फैशन का असली मज़ा दूसरों की नकल करने में नहीं, अपने अंदाज को पहचानने में है। तो सखियों, अगली बार जब कोई कहे कि ये तो पुराना फैशन है, तो ज़रा मुस्कुराइए और कहिए, फैशन पुराना नहीं होता, उसे पहनने का अंदाज पुराना हो सकता है। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज के टॉपिक पर बात, जिसमें हमने बात की पहनावे की। अब लेते हैं एक छोटा सा विज्ञापन।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: सखियों, अब बात करते हैं एक ऐसे दिन की जो दुनिया की अलग अलग भाषाओं और संस्कृति को एक दूसरे के करीब लाने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अनुवाद का मतलब सिर्फ एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदल देना नहीं है, बल्कि किसी विचार, भावना और संदेश को उसके सही अर्थ के साथ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। जरा सोचिए, अगर हमें किसी दूसरी भाषा में लिखी किताब पढ़नी हो या किसी बात को समझना हो, तो अनुवाद हमारे लिए एक पल का काम करता है। अनुवादक की जो भूमिका है वो इसीलिए भी खास है सखियों, क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करते हैं। भारत जैसी बहुभाषी देशों में तो अनुवाद की भूमिका और भी खास हो जाती है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियाँ हमारी विविधता को खूबसूरत बनाती हैं और अनुवाद इन्हें एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। तो सखियों, आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर उन सभी अनुवादकों को हमारा सलाम जो शब्दों के बीच पुल बनाकर भाषाओं को नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। तो सखियों, अब देते हैं अपनी बातों को थोड़ा सा विराम और मिलकर सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

सखियों, कहते हैं ना कि कुछ स्वाद सिर्फ जुबान को अच्छे नहीं लगते, सीधे दिल में उतर जाते हैं। और घर की रसोई से उठती घी की खुशबू, उसमें तली हुई कुरकुरी, मटरी की महक तो भला किसे अपनी ओर नहीं खींचती। चाय की प्याली हो, सामने मटरी की प्लेट हो और साथ में अपनों की बातें, बस फिर क्या है, साधारण सा पल भी यादगार बन जाता है। तो क्यों ना आज हम सुनो सखी की रसोई में ऐसा बनाएं जो बनाने में आसान हो और खाने में एकदम खस्ता और स्वादिष्ट। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं मटरी। तो कागज पेन संभाल लीजिए, क्योंकि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो पहले जान लेते हैं सामग्री। सखियों, इसके लिए आपको चाहिए आधा कप सूजी, 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच मोइन के लिए घी, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, ज़रूरत अनुसार पानी और मटरी तलने के लिए आप रिफाइंड ऑयल ले सकती हैं। सखियों, अब विधि नोट कीजिए। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा और सूजी लीजिए, उसमें स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन और काली मिर्च डाल दीजिए। अब इसमें 4 बड़े चम्मच घी डालें और इन्हें अच्छे से मिला दें। इसे तब तक मसलते रहें जब तक मैदा मुट्ठी में दबाने पर एक साथ बंधने ना लगे। अब सखियों, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका टाइट आटा आप गूंध लें। फिर आटे को सेट होने के लिए 15 मिनट तक ढककर रख दें। अब आटे से लोइयां बनाकर चाकू की सहायता से इसे लंबे आकार में काट लें और उसके बाद कढ़ाई में रिफाइंड तेल गरम कर लें और धीमी आंच पर आप इस मटरी को फिर तलें। जब मटरी का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और इसकी खुशबू रसोई से निकलकर घर के हर कोने तक पहुंचने लगे, तो समझ लीजिए आपकी कुरकुरी मटरी तैयार है। सखियों, ठंडा होने पर आप इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रख लीजिए और जब भी मन हो डब्बा खोलिए और चाय के साथ मटरी का आनंद लीजिए। फिलहाल हम आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: श्रोताओं, आप कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया अंकित धीमान ने और प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी रेडियो सखी प्रवेश को दीजिए अनुमति। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनेपन से अपने घर को चहकाते रहिए। श्रोता सखियों, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार, आकाशवाणी का ये धर्मवाणी
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी के मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता निपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रही हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
2: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले

एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936

0: 10 मिनट हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
4: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
5: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
4: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
6: अगर तुम मिल जाओ।
4: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं जो इस तरह से हैं, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, तरुण बोस, शशिकला, देवन वर्मा और सुरेखा पंडित। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था और इस गीत को लिखा था मशहूर शायर कैफी आजमी ने, संगीत था हेमंत कुमार का और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था अनुपमा। और अब पढ़ लेते हैं हमारे साथियों के कुछ संदेश संदेशी। हमारे एक साथी ने इबारत पढ़ के लिखा है कि दामन के दाग मिटाए जा सकते हैं मगर दिल के ज़ख्मी दागों को नहीं मिटाया जा सकता। दिलरुबा की दीदार के लिए दिलबर की हालत का अंदाज़ा एक दिल वाला ही लगा सकता है। दर्द भरे नगमों के ज़रिए के दरिया में बहने के लिए हमारा दिल भी बेकरार है। और एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में ज़िंदगी बहुत अपनी सी लगती है, कहीं रिश्तों की मिठास, कहीं दोस्ती, कहीं हंसी और कहीं आँखों की नमी, कहीं आँखों को नम कर देने वाली संवेदनाएं। उनकी सादगी भरी कहानियां हमें हंसाते हुए भी जीवन का थोड़ा और करीब जीवन को थोड़ा और करीब से समझा देती हैं। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में और उनके गीत आज भी दिल में बसे हुए हैं। एक और संदेश है कि ऋषिदा की फिल्में पारिवारिक बातों पर, मध्यम वर्गीय लोगों की आम समस्याओं पर बनी थी। उनमें प्रेम की भावना समान था। एक साफ सुथरी फिल्म रहती थी जो परिवार से सब लोग बैठ के देखें तो भी संकोच नहीं होता था। और ये अगला संदेशा है कि रात कली जब ख्वाब में आने लगे तो समझिए धीरे धीरे दिल मचलता ज़रूर है, जो प्रेम की शुरुआती दस्तक और सपनों के एहसास नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी में प्यार के रास्ते में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कभी कभी कोई पल ऐसे भी हो सकते हैं जहां लम्हे खो जाते हैं, जब जिस वक्त यार जुदा हो तो तब दिल कहता है कि तेरा मेरा प्यार अमर है, इसलिए हम अब के सावन में ज़रूर मिलेंगे। और एक मित्र ने लिखा है कि तेरे प्यार के दामन में ही लिपटे हैं हम, छोड़कर तुम्हें अब कहाँ जाएं हम, तेरी चाहत में इस तरह डूबे हैं हम, डर है कि खुशी से कहीं मर ना जाएं हम। क्या बात है। और ये एक अलग मैसेज है कि मन तो भागता ही है सपनों के आगे, लेकिन हमें प्रेम से दो दिलों के बीच की दीवारों को हटाना होगा। और ऋषिदा को सादर नमन।

साथियों, मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 में बनी क्लासिक फिल्म आनंद एक ऐसे जिंदा दिल इंसान की कहानी है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपनी मौत से नहीं डरता और बाकी बचे दिनों को पूरी खुशी के साथ गुजारता है। तो बताएं कि आनंद सहगल और डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की भूमिकाओं में कौन से अभिनेता नजर आए थे और इस फिल्म के कुछ डायलॉग बेहद मशहूर हुए थे, वो भी लिखकर भेज दीजिए हमारे FB पेज पर। और तब तक सुनिए ये गीत मन्ना डे की आवाज़ में। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी, फिल्म का नाम है आनंद।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए हैं, जो इस तरह से हैं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार और सुमिता सनपाल। और मशहूर डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाए। हमारे साथियों ने लिखा है कि 1940 के दशक में ऋषिदा ने न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन और एडिटर काम शुरू किया। उसके बाद वो मशहूर फिल्मकार बीमल रॉय के साथ मुंबई आ गए और 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्म में सहायक निर्देशक और संपादक के रूप में काम शुरू किया। उसके बाद राज कपूर के साथ उनकी फिल्म अनाड़ी ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। उनकी फिल्मों की कहानियाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सरलता, सादगी, सौम्य हास्य और आम जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती थी। ऋषिदा ने आम मध्यम वर्गीय परिवार, मानवीय मूल्यों को अपनी फिल्मों का आधार बनाया।

0: और अब पढ़ते हैं आपके कुछ संदेश। फिल्म चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन और पटकथा इतनी सहज है कि फिल्म बिना किसी फूहड़ता के पारिवारिक मूल्यों और साफ सुथरे हास्य का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफ़र की यही खूबसूरती है कि एक एक शब्द अपने भीतर किसी गीत की पूरी कहानी को छुपाए रहता है। और ये अगला मैसेज है कि आज ऋषिकेश मुखर्जी की याद का दिन है। उनकी फिल्में सादगी, संवेदनाओं और मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियां आम आदमी, उनके संघर्षों, परिवार और मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन्होंने व्यावसायिक चकाचौंध और कला फिल्मों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाया। अगला मैसेज है कि आखिर ये दिल का कौन सा राज है जो हर धड़कन में उसी का नाम और उसी के आने का इंतज़ार जगाता है। अगला मैसेज है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का मानवीय स्पर्श इन नगमों को सिर्फ गीत नहीं रहने देते बल्कि उन्हें हमारी अपनी ज़िंदगी और भावनाओं का हिस्सा बना देते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने कला फिल्मों की गंभीरता और व्यावसायिक फिल्मों की चमक दमक के बीच एक संतुलित और सहज रास्ता अपनाया। उनकी कॉमेडी फिल्में जैसे कि गोलमाल या चुपके चुपके में फूहड़ता नहीं बल्कि सौम्यता और हास्य था। आनंद या बावर्ची जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने जीवन का दर्शन, रिश्तों की गहराई का संदेश दिया है। दोस्तों, आज का सुरीला सफ़र हम तय कर रहे हैं ऋषिदा की फिल्मों की बातें और उनके गानों को सुनते हुए। और अब बात पति पत्नी के रिश्ते, सफलता, पुरुष का अहंकार, भावनाओं के उतार चढ़ाव पर बनी एक बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म अभिमान की। तो बताएं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी बच्चन ने कौन सी भूमिकाएँ निभाई थी और उनके साथी कलाकारों के नाम भी हमें लिख कर भेज दें।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

हमारे साथियों ने कुछ और बातें लिखी हैं और जवाब भी लिख दिए हैं। आवास की दुनिया के दोस्तों, आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं और एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफ़र, तो हम अपने साथियों के संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। इस सफ़र में लोकप्रिय गायक सुबीर कुमार की भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने और शास्त्रीय संगीत में माहिर गायिका के किरदार में नजर आई थी जया भादुरी बच्चन और उनके साथी कलाकार थे बिंदु असरानी, दुर्गा खोटे, ए के हंग।

डेविड अब्राहम और ललिता कुमारी। हमारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं कि 1957 में बतौर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुसाफिर, और उनकी मशहूर फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची, खूबसूरत, गुड्डी, आशीर्वाद, सत्यकाम, अभिमान, अनाड़ी और अनुपमा। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मनोरंजन करने के लिए फूहड़ता का सहारा लेना ज़रूरी नहीं है। उनकी फिल्में शुद्ध, सात्विक और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य होती हैं। आज के युग में ऋषिदा की फिल्में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। और एक साथी ने लिखा है कि आज के गीत ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत फिल्मों से होंगे। इन गीतों में ज़िंदगी की सच्चाई, हंसी, खुशी, रिश्तों की मिठास, दोस्ती, आँखों को नम कर देने वाला एहसास होगा। ऋषिदा को हम नमन करते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि प्रेम भी कितना अनोखा एहसास है, दो दिलों के बीच चाहे कितनी ही दीवारें हों, उसकी पुकार फिर भी सुनाई दे जाती है। चाहत का असर ऐसा होता है कि इंसान ज़मीन पर चलते हुए भी खुद को तारों के बीच महसूस करने लगता है, और तब दिल बार बार यही पूछता है, आखिर प्यार का ये राज है क्या। अच्छा जी, आज ऋषिकेश मुखर्जी की को याद करेंगे उनके फिल्मों के गानों से। उन्होंने कई पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों को बनाया जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी बनाई जिसे देखकर हंसते हुए हम लोटपोट हो गए। उनकी फिल्में परिवार में सब लोग साथ बैठकर देख सकते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें वक्त की पहचान खूब थी। उस ज़माने में उन्होंने वक्त की नब्ज़ पकड़ी और ऐसी फिल्में बनाई जो आम दर्शकों से लेकर एक ख़ास वर्ग के लिए थी, जहां सब कुछ सीधा सादा था और दर्शकों ने भी उन फिल्मों को खूब प्यार दिया। आज भी उनकी बनाई फिल्में जब टीवी पर आती हैं तो हम उन्हें देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। वे फिल्में कल भी कालजयी थी और आज के दौर के लिए भी बहुत अहम हैं। दोस्तों, आपको ऋषिकेश मुखर्जी की और कौन सी फिल्में याद हैं, कौन से गीत आपको पसंद है, वो हमें लिखकर भेजते जाइए। उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी हमें बताएं। और अब हम बात करेंगे चुपके चुपके, एक बेहद मशहूर क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसकी कहानी हास्य और मज़ेदार उलझनों पर आधारित है। आपने ये फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, तो बताएं कि प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी किस विषय के प्रोफेसर थे और उनके दोस्त प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा किस विषय के प्रोफेसर थे। और इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम लिखकर हमें भेज दें। आइए सुनते हैं ये गीत। वैसे तो सावन लगभग गुजर चुका है। आवाज़ है इस गीत में लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। धर्मेंद्र यानी प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी बॉटनी साइंस के प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे और सुकुमार सिन्हा बने अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था अंग्रेजी के प्रोफेसर का। और साथी कलाकार थे शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, उषा किरण, केष्टु मुखर्जी और ललिता चक्रवर्ती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कलाकारों ने स्टार बनकर नहीं बल्कि किरदार बनकर काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमूल पालेकर जैसे बड़े अभिनेताओं से उन्होंने बेहद सादगी भरे रोल करवाए। उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियां जैसे कि जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, दीप्ति नवल कोई ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि घरेलू पढ़ी लिखी और मजबूत विचारों वाली महिलाएँ होती थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषि दास सिर्फ हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि आंसुओं के जरिए जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझाना भी।

उनकी कला थी। आनंद बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इस संवाद के ज़रिए कैंसर से जूझ रहे एक इंसान की जिंदा दिली को जिस तरह उन्होंने पर्दे पर उतारा वो मील का पत्थर है। अभिमान, पति पत्नी के बीच अहंकार, ईर्ष्या और संगीत के प्रति प्रेम के टकराव को बेहद संजीदगी और बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाया गया है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिदा ने अपने 4 दशकों के करियर में 42 फिल्में डायरेक्ट की और उन्हें भारत के मिडिल सिनेमा का पायनियर माना जाता है। उनकी फिल्में मिडिल क्लास के माहौल को दिखाती थीं। एक मैसेज है कि ऋषिदा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक नई राह दिखाई। उनकी फिल्में ना तो तड़क भड़क भरी होती थी, ना बहुत ज़्यादा संजीदा होती थी, बल्कि उनमें सादगी और संजीदगी का एक बेहतरीन मिश्रण हुआ करता था। उनकी फिल्मों में आम इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी, उसकी खुशी, उसके गम और उसके मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। ऋषिदा की फिल्में ज़मीनी जनजीवन की जीवंत जगाती तस्वीर होती थी। दर्शक उनकी फिल्मों में खुद को महसूस करता था और बावर्ची फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक साथी ने लिखा है कि ये कैसा संयोग है कि इस वक्त टीवी पर फिल्म अनुपमा दिखाई जा रही है और गाना धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार चल रहा है और इधर रेडियो पर भी यही गाना चल रहा है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था। साथियों, 1979 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल की कहानी एक युवा राम प्रसाद और सख्त मिजाज बॉस भवानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है और अंत में कई मज़ेदार मोड़ के बाद सच सबके सामने आ जाता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। तो साथियों, इस मज़ेदार फिल्म की कौन सी बातें आपको याद हैं, हमें लिखकर कमेंट कर दें और साथ ही ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। तब तक सुना जाए ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है गोलमाल।

साथियों, आपके कमेंट्स और जवाब हमें मिल गए हैं, वो हम पढ़ देते हैं। अमूल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, अमिताभ बच्चन, देवन वर्मा और ओम प्रकाश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की अभिमान केवल एक संगीतमय फिल्म नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव और वैवाहिक जटिलताओं का एक गहरा मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। ये फिल्म आज 50 से अधिक सालों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये सिखाती है कि किसी भी सफल विवाह की बुनियाद एक दूसरे की सफलता का सम्मान करने और अहंकार को रिश्ते से दूर रखने पर टिकी होती है। अगला कमेंट है कि फिल्म अभिमान की सीख यही है कि महिलाओं के करियर पे पुरुष अहंकार को हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और एक साथी ने लिखा है कि अभी आनंद फिल्म का जिक्र हुआ था, तो इस फिल्म के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी को उसमें काम करने वाले हर किरदार की जगह खुद को रखकर देखना चाहिए, तो लगेगा कि हम ही हैं वहाँ पर। हर किरदार अपना सा लगता है। मैं ये फिल्म जब भी देखता हूँ तो अपने आप को वहाँ पर खड़ा पाता हूँ। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अभिमान में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में एक श्लोक संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत में रिकॉर्ड हुआ था, और यहीं से अनुराधा पौडवाल के गीतों के करियर की शुरुआत हुई थी। साथियों, 1980 में बनी फिल्म खूबसूरत एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी सख्त मिजाज मुखिया घर के सभी नियम कड़ाई से लागू करती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार तनावपूर्ण माहौल में रहता है। कहानी में बदलाव तब आता है जब मंजू नाम की लड़की कुछ दिनों के लिए उस घर में आती है और अपने चुलबुले, नटखट और जिंदा दिल अंदाज से घर के नियमों को चुनौती देती है। तो बताएं कि घर के मुखिया के किरदार में कौन सी अभिनेत्री थी, साथ ही कलाकारों के नाम भी बता दें। और खूबसूरत इस नाम से इस फिल्म का एक मॉडर्न रीमेक भी तो बना था, तो उस रीमेक फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी हमें बता दें। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये एवरग्रीन सुपरहिट गाना आशा भोसले की आवाज़ में। इस गुलजार गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

मशहूर हिंदी कॉमेडी फिल्म बुड्ढा मिल गया, फिल्म की कहानी दो गरीब और बेरोजगार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अचानक उन्हें एक अमीर और लापता करोड़पति मिल जाता है और उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े अमीर आदमी को उसके घर पहुंचाकर वो भारी इनाम पालेंगे। उसके बाद फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं, तो हमें बताएं कि वो करोड़पति अमीर आदमी कौन था, और साथ ही कलाकारों के नाम भी लिख दें, और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के हीरो की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। तब तक सुनिए ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया।

साथियों के जवाब हमें मिल गए हैं। अमीर लापता करोड़पति की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे ओम प्रकाश, मुख्य कलाकार थे नवीन निश्चल, देवन वर्मा, अर्चना और अरुणा ईरानी, और इस फिल्म के नायक नवीन निश्चल की पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो, जो कि अभिनेत्री रेखा की भी पहली हिंदी फिल्म थी।

साथियों, सुरीला सफ़र के हम सफ़र बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

0: आज की त्रिवेणी में बात करेंगे शहर की। साथियों, शहर सिर्फ इमारतों, सड़कों और भीड़ का नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हर शहर का अपना मिजाज होता है, अपनी रफ्तार होती है और अपनी एक अलग पहचान। कहीं सुबह की शुरुआत चाय की प्याली और अखबार से होती है, तो कहीं रात तक जगमगाती सड़कों पर जिंदगी दौड़ती रहती है। किसी शहर में सुकून मिलता है तो कोई शहर अपनी चहल पहल से दिल जीत लेता है, और कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होने लगता है। शायद इसी खूबसूरत, रंगीन और थोड़े शरारती अंदाज के लिए कहा गया होगा, ये शहर बड़ा अलबेला। तो चलिए शहर के इसी दिलकश अंदाज को महसूस करते हैं फिल्म सिंगापुर के इस गीत के साथ।
1: ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर

0: परियां
1: नमस्ते।
0: ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ

ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ

0: शहर की एक खासियत ये भी है कि ये अपने भीतर न जाने कितने सपने समेटे रहता है। छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर आते लोग अपने साथ उम्मीदें लेकर आते हैं, कुछ नया करने की, अपनी पहचान बनाने की और शायद किसी अपने के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाने की। शहर की भीड़ में जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो वही अनजान शहर उन्हें अपना लगने लगता है। फिर ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच भी एक घर, एक साथी और एक सपना काफी होता है। कुछ ऐसा ही एहसास है अगले गीत में, जहां शहर सिर्फ जगह नहीं बल्कि दो दिलों के सपनों का पता बन जाता है। सुनते हैं घरौंदा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: दो दीवाने शहर में

हर शहर की अपनी एक रौनक होती है और उस रौनक में वहाँ के लोग सबसे खास रंग भरते हैं। बाजारों की चहल पहल, सड़कों की रफ्तार, कॉलेज जाते युवा, दोस्तों की महफिलें और शाम ढलते ही रोशन होती गलियां। शहर की जिंदगी कई रंगों से मिलकर बनती है। खासकर बड़े शहरों में फैशन, स्टाइल और आत्मविश्वास का अपना ही अंदाज देखने को मिलता है। यही वजह है कि फिल्मों में भी शहर को अक्सर युवा ऊर्जा और आकर्षण के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। अब हमारे इस शहर सफर का आखिरी पड़ाव भी कुछ ऐसा ही चुलबुला और मस्ती भरा सा है। तो तैयार हो जाइए शहर की रौनक और युवा अंदाज से रूबरू होने के लिए फिल्म रक्षक के इस गीत के साथ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। SIT से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में $94.50 अरब से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
4: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
5: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25

0: 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
1: अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
2: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग से गेस्ट ये सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
1: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई

0: और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
1: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
2: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है असली नकली।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। नख्मा निगार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है सांझ और सवेरा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है छाया।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है नमक हलाल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में मॉनसून के अंतिम चरण में हुई भारी बारिश के कारण लाहौल स्पीति और किन्नौर समेत कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस बार मॉनसून में राज्य में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मौसम की मार से इस बार हिमाचल में सेब की फसल में गिरावट आई है और अभी तक करीब 1,14,00,000 सेब की पेटियां बाजार में पहुंची हैं। जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार मंडी मध्यस्थता योजना के तहत भी इस बार खरीद पर मूल्य बढ़ाने जा रही है, जिसका प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में ले जाया जाएगा ताकि बागवानों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल करीब 3 से 3.5 करोड़ सेब पेटियों की बंपर फसल हुई थी, जो कई वर्षों में सबसे अधिक थी।
1: अभी जो मॉनसून की आखिरी जो बारिशें हैं, इस बार कोई 3,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस बरसात के अंदर हुआ है। और ये प्रक्रिया है, केंद्र की टीमें जब इस किस्म के नुकसानों का हम मूल्यांकन करके भेजते हैं तो वो भी आके इसका अपने लेवल पे चेकिंग करते हैं। पिछले कल वो धर्मशाला और आज मनाली के उधर इलाके में गए हैं। जो 23 का जो मूल्यांकन था हमारा, जो 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान था, उसके एवज में कुल 2,500 करोड़ देने का केंद्र ने जो है बात मानी। 2,500 करोड़ में भी 500 करोड़ तो हमें देना है, तो 23 का पैसा अब आना शुरू हुआ है। सेब में काफी ज्यादा गिरावट हुई है, अभी तक 1,14,00,000 पेटियां ही मार्केट में आई है, जब पिछले बार इन्हीं दिनों में कोई 1,76,00,000 पेटियां मार्केट में थी। और जो हम मंडी मध्यस्थता के तहत जो सेब लेते हैं उसमें भी भारी गिरावट है।
0: कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की ओर से अनुशासनहीनता को लेकर दिए गए बयान पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि अनुशासन केवल उनके ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि जो लोग बयान दे रहे हैं उन पर भी पार्टी का अनुशासन लागू होना चाहिए। जगत नेगी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में अपनी बात पार्टी फोरम में रखी है और संबंधित नेताओं के सामने भी अपनी बात रखी है। नेगी ने राहुल गांधी के स्लीपर सेल संबंधी बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर ऐसे लोगों को हटाने की जरूरत है जो पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे। उन्होंने कांग्रेस के संविधान और पार्टी के आदर्शों के अनुरूप संगठन को आगे बढ़ाने की बात कही।
1: अनुशासन सिर्फ मेरे पे लागू नहीं होता, जो बोल रहे हैं उनके ऊपर भी अनुशासन लागू होता है। और मैंने एक कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में अपनी बात जो है पार्टी फोरम पे भी रखा है, इनके सम्मुख भी रखा है, पर ये बात तो वहीं से बाहर आ रही है। उसके बाद जब मेरे से बाहर पूछा जाता है तो जब ये बात पहले ही बार जो है पार्टी फोरम से लीक हो गई तो उसके बाद जवाब तो मुझे देना है। और मैंने क्या गलत कहा? अनुशासन तो तब होगा जब मैंने कोई पार्टी के हितों के खिलाफ किया। मैं तो पार्टी के हित की बात कर रहा हूँ। जो जयचंद है, भगोड़े हैं, वो पार्टी उससे नहीं बनेगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक शिमला जिला के रोहड़ू, चिड़गांव और रामपुर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के साथ संवाद और नशे के विरुद्ध जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। मेजर मनकोटिया का कल सुबह निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंदर गोमा के नेतृत्व में प्रदेश के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आईजी नागोया 2026 एशियाई खेलों के संदर्भ में जापान की अध्ययन व अनुभव यात्रा के दौरान टोक्यो स्थित जापान ओलंपिक संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा 20वें एशियाई खेल आईजी नागोया 2026 से संबंधित हिमाचल प्रदेश के व्यापक अध्ययन व अनुभव कार्यक्रम का हिस्सा है। आईजी नागोया में आयोजित हो रहे 20वें एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी व प्रतिनिधि

0: मेडल भाग ले रहे हैं। एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। विषय है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में शिमला और धर्मशाला शामिल। वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का है।
2: स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश के 50 आदर्श शहरों के विकास के लिए प्रगति 50 पहल को शुरू किया है। इसका शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 चयनित शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे देश के बाकी हिस्सों के लिए एक आदर्श स्थापित होगा। इन 50 शहरों में हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला को भी शामिल किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अवसंरचना के अंतर्गत लक्षित केपीआई आधारित कार्रवाई और गहन एवं तकनीकी सक्षम निगरानी का लाभ उठाकर स्वच्छता के उच्च मानदंड को प्रदर्शित करते हुए प्रगति 50 पहल के अंतर्गत इन 50 मॉडल शहरों की पहचान की है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कहा कि 24 राज्यों के 50 शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करते हुए देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श शहर बनकर उभरेंगे। इसमें प्रमुख शहरों, सांस्कृतिक महत्व के शहरों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया है। इस पहल का उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा के एक संरचित ढांचे के माध्यम से शहरी स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्युक्त जल प्रबंधन, स्वच्छता और नागरिक भागीदारी में स्पष्ट सुधार लाना है। परिणाम आधारित आकलन और तकनीक आधारित निगरानी के माध्यम से प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाएगी। इन शहरों की प्रगति पर नजर रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से हर दूसरे महीने समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। पिछले एक दशक में स्वच्छता एक जन आंदोलन से विकसित होकर जीवन शैली बन गई है। एक नए आदर्श शहरों की पहल के शुभारंभ पर शहरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी और वे अन्य शहरी केंद्रों के लिए आदर्श बन सकेंगे। राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों से सूक्ष्म स्तर की कार्य योजनाएं तैयार करने और उनके त्वरित व प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। युवा शक्ति और तकनीक के बढ़ते सम्मिलन में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से तीसरे बैच का शुभारंभ मिशन के अंतर्गत 75 स्टार्टअप को शामिल करने और उन्हें विकसित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को उपलब्धि भी दर्शाता है। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को बेहतर अनुभव और समग्र सेवा वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये पहल संपूर्ण शहर के दृष्टिकोण को अपनाती है, जिससे सभी हितधारकों, भागीदारों और शहरी स्थानीय निकायों को योजना और कार्यान्वयन में शामिल किया जा सकता है। कुशल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छतम पोर्टल पर सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रगति जैसी डिजिटल समीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है। मंत्रालय के अधिकारियों को नियमित पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए विशिष्ट शहरों का कार्यभार सौंपा जाएगा। ये मानते हुए कि सतत शहरी परिवर्तन क्षमता निर्माण और निरंतर सीखने पर निर्भर करता है, SBMU ने हितधारकों को तकनीकी दिशा निर्देश, मॉडल डिजाइन और लक्षित सलाह प्रदान करके सशक्त बनाया है। कार्यक्रम के दौरान परियोजनाओं के जमीनी कार्यान्वयन को और अधिक समर्थन देने के लिए निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट C&D के द्वितीयक संग्रहण केंद्र की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अंतर्गत अनिवार्य नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के स्रोत पृथककरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले एक दशक

0: में एसबीएम अर्बन ने पारंपरिक अपशिष्ट प्रबंधन से हटकर अत्याधुनिक तकनीक आधारित समाधानों की ओर कदम बढ़ाया है। मिशन ने नवाचार को गति देने के लिए अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला में 75 स्टार्टअप्स को शामिल किया है। इस कार्यक्रम में 13 स्टार्टअप्स के शामिल होने से ये पहल स्वच्छ तकनीक आधारित शहरी समाधानों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: भाई प्यार के बहुत सारे बहाने होते हैं। प्यार तो आपने बोला कि प्रशंसा कर दूं तो मोहब्बत बढ़ जाती है। हाँ, कोई छोटा सा तोहफा देता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है। और किन बातों से मोहब्बत बढ़ती है बताइए ना।
1: अरे आप तो मेरी परीक्षा ले रही है, इसका मतलब है ना जिसने मोहब्बत की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि मोहब्बत किन किन कारणों से हो पाती है।
0: मोहब्बत किसके दिल में नहीं है भला बताइए। यहाँ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहब्बत से भरे पड़े होते, वो भी आपस में प्रेम करने का अलग तरीका होता है। हाँ? तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई छोटा सा तोहफा दे दे तो प्यार बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे साड़ी देंगी तो आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ जाएगा।
0: ओ, आपने तो पूरे देश को बता दिया।
1: आप मुझे बोंका ही साड़ी देने वाली है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो जैसे ही वो साड़ी मुझे मिलेगी मेरे अंदर एक मोहब्बत का जो अंकुर है वो फूटने लगेगा।
0: अच्छा,
1: आपकी प्रति।
0: मतलब इसके पहले आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं।
1: थोड़ी सी कम।
0: मतलब साड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे।
1: हाँ, ठीक है। और उसके बाद मेरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी।
0: ओहो, हाँ, जब पहन के आएंगे तब। तो ठीक है, प्रशंसा हम अभी से किए दे रहे हैं। मंदाकिनी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन ये प्रशंसा झूठी हो जाती है ना।
1: बिल्कुल, जब मैं पहन के आऊंगी साड़ी और आप मेरी प्रशंसा करेंगी उस वक्त जो होगा वो अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे जो श्रोता है खासतौर से हमारी बहनें जानना चाहती हैं कि कौन सी है ये बुमकाई साड़ी, कैसी होती है, तो बताइए उन्हें।
0: देखिए, उड़ीसा की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक बेहद खूबसूरत पहचान है बुमकाई साड़ी। बुमकाई साड़ी का नाम उड़ीसा के गंजाम जिले के बुमकाई गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है। बाद में ये बुनाई परंपरा उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई और आज बुमकाई साड़ी उड़ीसा की पहचान बन गई है और प्रमुख हथकरघा साड़ियों में गिनी जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी बुनाई में इकत और अतिरिक्त धागे से बनी सजावटी बुनावट का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। बॉर्डर और पल्लू में महीन ज्यामितीय और पारंपरिक आकृतियां साड़ी को एक अलग स्थान बना देती है। साथ ही बोमकई साड़ियों में प्रकृति और लोक जीवन से प्रेरित बहुत सारी आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं ममता जी, जैसे मछली और कोई पक्षी है ना, इस तरह से फूल हैं, पत्तियां हैं, शंख हैं, कमल है, मंदिर है और धार्मिक प्रतीकों से जो प्रेरित आकृतियां होती हैं वो इस साड़ी में हमें दिखाई देती हैं।
0: जो और ज्यामितीय डिजाइन भी बनती है। और बोमकई साड़ियों में अक्सर गहरे और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल, काला, पीला, हरा, नीला, नारंगी और मरून जैसे रंगों का संयोजन बहुत आकर्षक लगता है। वैसे आपको गाढ़े रंग तो बहुत पसंद है।
1: मुझे गाढ़े रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे मैरून और लाल,
0: मतलब दो साड़ी चाहिए आपको।
1: नहीं नहीं, लाल और मैरून, हाँ एक ही कलर हो गया ना, काला और मैरून।
0: अच्छा,
1: या तो, नीला और मैरून,
0: तो मतलब ये
1: इस अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली।
0: अच्छा, आप मुझे साड़ी दीजिए। हम तो डरे कि दो अलग अलग साड़ियां आपको देनी होंगी। वैसे कई साड़ियों में मंदाकिनी जी गहरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि के साथ चमकीला बॉर्डर भी होता है और उसका पल्लू भी बनाया जाता है चमकीला। यही विरोधाभासी रंग संयोजन बोमकई को दूर से ही पहचानने योग्य बना देता है।
1: हाँ, और बोमकई साड़ी का जो पल्लू है वो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक होता है। पल्लू में छोटे छोटे पारंपरिक डिजाइन के बेहद बारीकी से उन्हें बुना भी जाता है। और बोमकई जो साड़ी है मुख्यतः कॉटन है, सिल्क है, दोनों प्रकार से तैयार की जाती है। मैं आपसे सिल्क वाली साड़ी लेना पसंद करूंगी।
0: ओह, तो बड़ी महंगी होती है।
1: कोई बात नहीं।
0: कॉटन बोमकई हल्की, आरामदायक और दैनिक पहनावे के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, जबकि सिल्क बोमकई ज्यादा भव्य दिखाई देती है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर ये पहनी जाती है। और बोमकई साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक स्मृतियां भी बुनी हुई हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और इसके डिजाइन स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन, धार्मिक परंपराओं और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेते हैं, इसीलिए

0: एक बोमकई साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बुनकर की कल्पना और संस्कृति का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और एक सुंदर बोमकई साड़ी के पीछे बुनकर की लंबी मेहनत होती है। धागे का चयन होता है, रंगों की योजना, बॉर्डर और पल्लू का पैटर्न, और करघे पर इसकी बुनाई की जाती है।
0: बिल्कुल, और हर चरण में जो चरण होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही धैर्य से ये साड़ी बनाते हैं, बहुत ही कौशलता के साथ साड़ी बनाई जाती है। और हथकरघे पर तैयार होने के कारण हर साड़ी में बुनकर के हाथों की एक अलग पहचान भी दिखाई देती है ममता जी।
1: और आज बुनकर साड़ी ने पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक फैशन में भी अपनी जगह बना ली है। डिजाइनरों ने इसके पारंपरिक डिजाइन और रंगों को आधुनिक परिधानों में भी इस्तेमाल किया है।
0: हाँ, और तो और आप अगर साड़ी नहीं लेना भी चाहते तो उसके दुपट्टे भी ले सकते हैं। बोमकई के दुपट्टे मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं, और अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और इस तरह पारंपरिक बुनाई नई पीढ़ी तक भी आज पहुंच रही है।
1: बिल्कुल, और इस साड़ी में धागे केवल कपड़ा नहीं बुनते, वे उड़ीसा की संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को भी उकेर देते हैं इसमें। और इसके अलावा उड़ीसा की धरती की सादगी, लोक जीवन के रंग और बुनकरों की कल्पनाशीलता जब करघे पर एक साथ उतरती है तब जन्म लेती है बोमकई। और इसके हरे धागे में परंपरा की जो परंपराएं होती हैं वो देखने लायक होती हैं।
0: बहुत ही सुंदर होती है बोमकई साड़ी। और अगर हमारी बहनों में किसी के पास है जो सखियां सुन रही हैं तो उसका जिक्र करें कि उनके पास क्या बोमकई साड़ी है, अगर है तो किस रंग की है, उन्होंने इसे कब कब पहना,
1: और दुपट्टा या स्टोल भी है तो उसका भी जिक्र करें। तो और इस गाने में भी कोई दुपट्टा ढूंढ सकते हैं।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ।

जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला अरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: तो मंदाकिनी जी, आप लगता है कुछ अनुवाद करने लगे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि वैसे एक बात कहें, अनुवाद करने की जरूरत नहीं, आजकल सब कुछ अगर डिजिटल हम ढूंढते हैं तो सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है,
1: मिल जाता है।
0: लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच, बल्कि दो भाषाओं के बीच ही नहीं बल्कि संस्कृतियों, दो संवेदनाओं और दो संसारों के बीच पुल का काम करता है, और एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा के पाठक तक उसी भाव और अर्थ के साथ पहुंचाने का काम भी करता है, इसीलिए अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आप साहित्यकार हैं, आपको पता है कि जब आप अपनी किताब लिखती हैं और उसके बाद कोई और साहित्यकार या आलोचक या अनुवादक आपसे आपकी किताब मांगता है और आपकी किताब को अन्य भाषा में जब अनुदित करता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति, एक इतिहास और भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे होती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद संभव बनाता है ये अनुवाद। और इसीलिए आज का एक खास दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
0: तभी तो कहा जाता है ना कि अनुवाद भाषाओं के बीच बना वो पुल है जिस पर शब्द एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और अपने साथ भाव, विचार और संस्कृति को भी लिए चलते हैं। और आपको बताऊं मंदाकिनी जी कि जाने माने गीतकार गुलजार साहब अक्सर कहते हैं कि जब किसी किताब का अनुवाद किया जाता है तो जैसे इत्र की शीशी को इत्र की शीशी से इत्र दूसरी शीशी में जब डालते हैं, पलटते हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा इत्र उस शीशी में रह जाता है। तो जो अनुवाद किया जाता है तो जो भाषा की अहमियत है, वो जो संवेदनाएं हैं, थोड़ी ना थोड़ी उसमें छूट जाती
1: है।
0: लेकिन फिर भी जब हम अनुवाद करते हैं तो ना पढ़ने से अच्छा होता है कि अनुवादित चीजों को, अनुदित चीजों को पढ़ा जाए, और हम उसमें मीन मेक निकालते रहे कि अरे इसमें तो वैसा लिखा है और यहाँ पर अनुवाद उसने ऐसा किया है।
1: हम क्या करते हैं,
0: भावों को
1: अनुवाद के बाद भी हम आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा अनुवाद वो है जिसमें भाषा बदल जाती है लेकिन भाव नहीं बदलता। तो कविताएं हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, वैज्ञानिक ज्ञान विचार हो, जब अनुवाद के माध्यम से सीमाएं पार करते हैं तो दुनिया थोड़ी सी करीब आ जाती है। और साथ ही भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता जी, हिंदी की बात करें, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, असमिया है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, और अनेक भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब आता है और एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साथ पाठकों तक पहुंचता है और हमारी विविधता के बीच एक साझा सांस्कृतिक जो रिश्ता हमारा बनता भी है।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अनुवाद के बारे में ये गाना क्या कहता है, जरा सुनते हैं।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। तो भाई 3 अक्टूबर जश्न का दिन होगा और हमारे श्रोता भी तैयार रहे, हम सब तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: तो भाई 3 अक्टूबर को सब तैयार रहे।
5: हाँ,
0: हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है और हमें इंतजार है कि आप मोबाइल में जो देख रही हैं
5: क्या पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले 3 अक्टूबर की बात भी कहना चाहूंगी ममता जी कि हमारे श्रोता तैयार रहे हैं दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम जो लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसे सुनना नहीं भूलें और अपने विचार लिखना नहीं भूलें।
0: मतलब सारे काम मुलतवी करके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक विविध भारती के रेडियो सेट के पास बैठ जाए और विविध भारती सुनते रहे।
5: सुनना और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है भाई।
0: बिल्कुल,
5: हम लाइव होंगे ना
0: जी, फेसबुक लाइव करेंगे।
5: बिल्कुल।
0: तो अभी आप जो पढ़ने वाली थी,
5: वो ये पढ़ना चाह रही थी कि अनुवाद पर जब हम बात कर रहे थे, हमारे श्रोता कहते हैं कि अनुवाद करना उन्होंने भी सीखा था परंतु उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। पर हम उन लोगों को, उन अनुवादकों को बहुत बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को, कहानियों को, उपन्यासों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुंचाया है। अनुवाद करने से हर भाषा का ज्ञान हर अलग अलग भाषा भाषियों को हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है।
0: मंदाकिनी जी, आजकल एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में सबटाइटल स्क्रीन पर चलते हैं जिससे समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं अलग अलग राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों को, खासकर साउथ की फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और कोरियन टीवी सीरियल्स को सबटाइटल्स के साथ देखता हूं।
5: ये होता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब हम उन अनुदित फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है और सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना पसंद करते हैं और अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
0: और एक बात और है, एक भाषा का साहित्य दूसरी भारतीय भाषा में पहुंचने से पढ़ने वालों का संसार भी व्यापक होता है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी एक का साहित्य हिंदी पाठकों तक, हिंदी का साहित्य अन्य पाठकों तक अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है तो कितनी अच्छी बात है। आज जहाँ पर मशीनों के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसलेशंस किए जा रहे हैं, एआई के जरिए और डिजिटल अनुवाद उपकरणों ने अनुवाद को काफ़ी समृद्ध बना दिया है और तेज़ी भी आ गई है। साहित्यिक, कानूनी, सांस्कृतिक और संवेदनशील सामग्री में जो मानव अनुवादक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एआई के माध्यम से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती
5: हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, अनुवाद तो हो जाता है।
0: कई बार उपयुक्त शब्द की बजाय कुछ और शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और आप वहां पर चूक जाते हैं।
5: बिल्कुल, और अब हम चूक रहे हैं, गाना नहीं सुनवा रहे हैं।
0: बिल्कुल नहीं, ये रहा गाना, सुनते हैं।

0: मंदाकिनी जी, जब आपसे आपसे छोटे मतलब आपसे आगे की पीढ़ी की कोई कोई नौजवान, कोई लड़की या कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, अरे आंटी आपको इतनी समझ नहीं है, अब जमाना बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है?
1: सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है उनकी मासूमियत पर, उनके भोलेपन पर। और होता है घर में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो अक्सर कहते हैं अरे आपको इतना भी नहीं पता, अरे ऐसा नहीं होता है, अब कितना कुछ बदल गया है, आप नहीं जानते ऐसा होता
0: generation,
1: है
0: आप ओल्ड जनरेशन हो, जबकि बहुत बड़ा फासला नहीं है दो पीढ़ियों के बीच, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो दरअसल जो जनरेशन गैप है, ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती सोच की दूरी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। और हर पीढ़ी क्या है ममता जी, अपने साथ एक नया समय लेकर आती है और उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, पसंद नापसंद, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। और यही अंतर जब समझ की कमी और संवाद की दूरी में बदल जाता है तो हम पीढ़ी अंतराल पर आ जाते हैं, यानी जनरेशन गैप की बात हम करते हैं।
0: बिल्कुल। और एक ही परिवार में रहने वाले माता पिता बच्चे कई बार एक दूसरे से तो प्रेम बहुत करते हैं, फिर भी उनकी सोच में इतना फासला होता है कि छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है और वो समझ नहीं पाते कि ये बहस कहाँ से कहाँ चली जाएगी। समय के साथ जब समाज तेजी से बदल रहा है, आज की पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के वातावरण में बड़ी हो रही है, तो ऐसे में जानकारी पाने के साधन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ पिछली पीढ़ियों ने सीमित साधनों और ज्यादा पारंपरिक वातावरण में जीवन बिताया है, तो ये स्वाभाविक है दो पीढ़ियों के बीच का
1: अंतराल होगा। लेकिन माता पिता को लगता है ममता जी कि आज के बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें लगता है कि उनकी बड़े लोग जो है उनकी बात को समझना ही नहीं

0: चाहते हैं। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, फर्क केवल समय का है। और जिन परिस्थितियों में एक पीढ़ी बड़ी हुई, दूसरी पीढ़ी उन्हीं परिस्थितियों में बड़ी नहीं हुई। जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत पुरानी पीढ़ी जो है बहुत ही पारंपरिक तरीके से बड़ी हुई, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक और तेज बदलावों के बीच बड़ी हो रही है, और इसके लिए मोबाइल की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये उनके जीवन का एक आम हिस्सा हो गई है। और वहीं पिछली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, वहां पर रिश्तों को चिट्ठियों से, मुलाकातों से और आमने सामने की बातचीत के जरिए सींचा जाता है। तो दोनों अनुभव अलग हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है या दूसरा गलत है, पर हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे गलत हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। दरअसल दोनों पीढ़ियों के अनुभव अलग अलग हैं। बुजुर्गों के लिए जो बात अनुशासन और संस्कार की होती है, वहीं युवा पीढ़ी के लिए वो रोक टोक वाली होती है। उन्हें लगता है कि अरे नाहक रोक टोक कर रही हैं आप, हर चीज पे आप रोक लगाती हैं, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी आज़ादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये होता है। और पहले के जीवन में जो स्थिरता थी, सुरक्षा को लेकर ज़्यादा महत्व दिया जाता था, अच्छी पढ़ाई हो, स्थायी नौकरी मिले और विवाह में स्थायित्व हो, मतलब लंबे समय तक जीवन टिके एक दूसरे का, और परिवार को जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ माना जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा बदल गई है कि हमें खुद क्या करना है वो हम तय करेंगे। पहले माता पिता बड़े बुजुर्ग तय करते थे,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अब देखा जाए तो उनकी सोच भी गलत नहीं है। युवा पीढ़ी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक समय था कि बड़े तय कर देते थे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, नौकरी करनी है कि नहीं, शादी कब करनी है,
0: ये और वही विवाह तय कर लेते थे माता पिता, और लड़की हो या लड़का बहुत ही सहज स्वीकार भी कर लेते थे रिश्ते को। अब क्या हो गया है ममता जी, कई जो बुजुर्ग है वो महसूस करते हैं कि आज के बच्चे पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनकी बातें नहीं सुनते और जल्दी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि बदलती हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता फैली हुई है, और डिजिटल दुनिया ने युवाओं की जो दिनचर्या है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसकी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए हर बदलाव को संस्कारों की कमी मानना ये उचित नहीं है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, हम तो बहुत संस्कारित थे। इस तरह की बात जो हम करते हैं ना, वो पीढ़ी अंतराल को बढ़ाती ही है।
1: समय भी प्रतिस्पर्धा का हो गया है। पहले समय आसान था, जिंदगी आसान थी, अब उतनी आसानी नहीं रही। आज के युवा अपने करियर में नए नए विकल्प तलाशना चाहते हैं। वे नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कला, खेल, डिजिटल मीडिया और दूसरे नए क्षेत्रों में भी करियर अपना आजमाना चाहते हैं। यहीं से कई बार मतभेद शुरू हो जाते हैं और माता पिता और दादी दादा, खासतौर से नानी नाना में लंबा गैप होता है। तो उनका ये कहना होता है, अरे भाई यहीं पर हमारे घर, हमारे नजरों के सामने रहो तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच है कि हमें अच्छा करना
0: है, वो बाहर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। हमारे समय में क्या होता था कि पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ या एलडीसी का एग्जाम देकर क्लर्क बन जाओ, और लेकिन रहो इसी शहर में आसपास, तो हम मान लेते थे उस बात को। लेकिन आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा संसार है, वो उसमें जीना चाहते हैं और हमें उन्हें जीने देना चाहिए।
1: बातें कितनी भी कर लीजिए, रहिए इर्द गिर्द गीत के साथ, सुनते हैं ये गाना।

0: बिल्कुल सही कहा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, और आपका साथ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ममता जी।
1: मुझे भी आपका साथ बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन हम इस पर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले एक जरूरी बात अपने सखियों से खास तौर से साझा कर लें, सखाओं से भी।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल रफ्तार जब हौसलों से मिलती है तो इतिहास रच उठता है, और कल एशियन गेम्स के ट्रैक पर भारत की चार बेटियों ने यही इतिहास रचा। किरण पाहल, एम आर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज, इन चारों ने ऐसी दौड़ लगाई कि 400 मीटर रिले में ऐसी दौड़ लगाई कि तिरंगा सबसे ऊपर लहराया अपना तिरंगा, और भारत की झोली में आया स्वर्ण पदक। ये सिर्फ 400 मीटर की चार दौड़ नहीं थी, बल्कि ये मेहनत, उम्मीद और हौसले की दौड़ थी। किरण ने शुरुआत की, पूवम्मा ने बढ़त बनाई और प्राची ने उसे संभाला, और आखिरी चरण में विद्या रामराज ने अपनी रफ्तार से भारत का स्वर्ण पक्का कर दिया। तो सलाम करते हैं इन चारों लड़कियों को, गोल्डन गर्ल्स कहलाएं, और जिन्होंने साबित कर दिया कि जब कदमों में जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं
0: होती। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें अभी जब हम पीढ़ी अंतराल की बात कर रहे थे, वही बात होती कि लड़कियां हैं तुम घर का काम करो, तुम्हें तो आखिर पढ़ लेकर करना क्या है, घर का काम ही तो करना है। ये जो मानसिकता है अब लड़कियों ने बिल्कुल दूर कर दी है। घर का काम अपनी जगह है, लेकिन बाहर की दुनिया में अपना परचम फहराना ये लड़कियों ने सीख लिया है और वो कर भी रही है।
1: ये जो प्रशंसा वाली बात है ना, तो उन लड़कियों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, इन चारों लड़कियों की और देश की उन तमाम लड़कियों की जो अपने जुझारूपन से बहुत कुछ कर रही हैं,
0: बिल्कुल
1: लीक से हट कर रही हैं, जहां पर उन्हें सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फिर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब हमारी एक सखी है जो कह रही है कि प्रशंसा के कुछ शब्दों में वो ताकत है जो किसी की भी दुनिया बदल सकती है। अगर हम प्रशंसा का अर्थ समझें तो हर दिन हर पल की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमें जीने का अवसर देती है। प्रशंसा के कुछ बोल निराशा में बड़ी आशा का काम करते हैं, मगर एक सच और है, अक्सर हम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मन ही मन उसकी तुलना स्वयं से करने लगते हैं। मगर जब मन को कुछ अच्छा लगे तो उसे जाहिर कर देना चाहिए, कोई चीज दिल को छू जाए तो उसकी प्रशंसा जरूर करें।
0: बिल्कुल सही कहा, एक सखी ने लिखा है कि अगर प्रशंसा की बात करें तो किसे अच्छी नहीं लगती। रेडियो सखी ममता जी और मंदाकिनी जी द्वारा हर प्रोग्राम की प्रस्तुति प्रशंसा करने लायक होती है, फिर वो सुरीला सफर हो, सखी सहेली हो या छाया गीत, हम उनके प्रति माया हो ही जाती है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने विविध भारती चैनल बनाया। अगली 3 अक्टूबर के दिन विविध भारती का जन्मदिन जो आ रहा है, हम सभी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं।
1: क्या बात है, शुक्रिया। और एक सखी ने लिखा, एक श्रोता ने लिखा है, तारीफ वही अच्छी लगती है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली सच्चाई हो, और सच्ची तारीफ से अपनापन बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी कार्य में प्रशंसा प्राणवायु का काम करती है, किसी के अच्छे काम या गुणों की सच्ची पहचान यानी प्रशंसा बहुत अच्छी बात है। खूबी, सुंदरता, महिमा कह देना, स्तुति कर देना, गुणों का बार बार बयान करना यानी गुणगान करना, इसके अलावा बधाई या अभिनंदन में भी स्तुति की छटा दिखाई देती है। आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक व्यवहार को अच्छी प्रेरणा मिलती है प्रशंसा से, और आपसी संबंध बेहतर बन जाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द हमारे हैं लेकिन जब आपके विचारों से जुड़ते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपकी प्रशंसा हमारे लिए हौसला है और प्यार से मिले शब्द हमेशा दिल में रह जाते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि प्रशंसा जहां जरूरत होती है वहां जरूर करनी चाहिए। प्रशंसा के लायक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गुण, कार्य, व्यवहार देखकर प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में कोई भी सदस्य अगर इसका पात्र होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और मैं तो करता हूँ जरूर प्रशंसा।
1: अब कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। कई बार जब प्रशंसा चापलूसी का रूप ले ले तो प्रशंसा नहीं होती है बल्कि वो चापलूसी कहलाती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अब हम सुन लेते हैं एक गीत ममता जी।

0: गाने की प्रशंसा करने वाली हैं क्या?
1: बहुत
0: ये वो गाने हैं हाँ। जो आपके दिल में निवास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और किसी की प्रशंसा भी हमारे दिल में बैठ जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, प्रशंसा बड़ा नवीन और रोचक मुद्दा है। तो ये भी तो प्रशंसा हुई हाँ। हमारे लिए हाँ। प्रशंसा के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। कोई शो लगा दीजिए तो अपने आप प्रसन्न हो गया मन और हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए लगा दिया। हमारी नानी दीदी को नानी दादी को मारवाड़ी सास बहू का शो देखकर मजा आता था। हमें तो और भी कुछ शोज के नाम लिखे हैं जो टेलीविजन पर इन्होंने देखे कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता था और जब कोई लगा देता था तो हम उसकी प्रशंसा करते थे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और प्रशंसा तब भी की जाती है ममता जी जब हम कोई अच्छा व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि मैं सूजी के व्यंजन बनाऊंगी आप खाएंगे तो निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगे।
0: तो पहले तारीफ कर दे, बहुत अच्छा सूजी का व्यंजन आपने बनाया, सूजी का हलवा बनाने वाली है या उपमा या फिर कुछ डोसा।
1: बहुत सारी चीजें हमारे जो सखियों ने भेजी है हम उनको देखते हैं क्या क्या बनवाती है वो हमसे। देखिए एक लिखते हैं कि सूजी का बहुत ही आसान व्यंजन है लौकी के चिल्ले, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए आपको हरी मिर्च, लौकी, पानी आवश्यकता अनुसार लेना होता है और सूजी को बहुत कम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें, थक कर फिर उसको रख दें। तब तक लौकी को कद्दूकस कर लें और अच्छे से धो के उसका पानी बिल्कुल अलग करके सूजी में मिला दें और हरी मिर्च भी डाल दें, साथ ही मसाले, नमक, अजवाइन, ऑर्गिनो जो भी उपलब्ध हो सबको मिक्स करके लोहे के तवे पर फैलाकर बहुत हल्के घी में चिल्ले को सेक लें। सेकते समय चिल्ले को उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पलटें, दबा दें जिससे वो सॉफ्ट बन जाते हैं। इसमें बहुत कम घी और समय भी बहुत कम लगता है।
0: और अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और कुछ कोई रेसिपी बताएं या कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: की सहेली।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार, और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े बॉल वाला रेडियो
1: जी, जी।
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है
1: जी।
0: और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए
1: जी। मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुँच गया, वहाँ बहुत बड़े बड़े रेडियो थे वॉल्व वाले और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट। तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूँ।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे
0: जी, जी।
1: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
0: जी,
1: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से ये रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि वो वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का। विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं। इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
0: गीतों
1: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही।
0: क्या बात है
1: जी।
0: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर, खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
1: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
0: जी,
1: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
0: जी, जी।
1: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे। तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था उनकी आवाज से, और उनके और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो
0: जी।
1: कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे, तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया। वहाँ कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे। उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहाँ, जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है, स्कूल छूट गई कोई बात नहीं
0: जी।
1: स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है
0: जी,
1: लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की

0: बहुत बड़ी दुनिया है।
1: क्या बात है,
0: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
1: अच्छा।
0: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
1: जी, जी, जी।
0: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी। एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी। आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले, यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
1: अच्छा।
0: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियाँ पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी।
1: 3 साल में
0: कहा। मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
1: क्या बात है।
0: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
1: क्या बात है,
0: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है। उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
1: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
0: मैं रिसर्च उस तरह से देखो, मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहाँ भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जा करके गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: उससे वो पूरा माहौल जो है ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
1: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर किसी विषय पर तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
0: ये बम्बई का ही है और इसमें भी देखो हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे।
1: जी, जी।
0: रमन मिश्र जी जो हमारे बहुत अच्छे
1: किताब,
0: उनकी भी दुकान वही है बम्बई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए हैं उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें 2 बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, वो तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
1: अच्छा।
0: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं।
1: जी।
0: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक लोकल था। और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इंप्रेस मिल थी, उस इंप्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा, तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इंप्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इंप्रेस मिल, और उस इलाके की भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी उस मिल के कारण बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया। तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को

0: हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरे कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया, लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर हैं, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
1: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी या अपने आप लिख जाती है?
0: कहानी लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
1: बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
0: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
1: बिल्कुल,
0: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
1: जी जी,
0: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
1: जी जी, और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
0: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सैक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली।
1: जी,
0: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सैक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
1: जी, तो सुनते हैं ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति जिसमें तीन कहानियां साज नासाज और आमाजगा और अनुभूति
2: जी।
1: तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
2: अच्छा,
1: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज नासाज में शायद सैक्सोफोन है, तो ये सैक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सैक्सोफोन ने, क्या थी?
2: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश

0: नाथ शाह का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा।
1: जी
0: एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बिटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपके सफेद बाल, और वो सेक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सेक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, वो जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
1: क्या बात है।
0: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया।
1: असर
0: उस
1: किया।
0: सेक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सेक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बम्बई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद।
1: जी
0: बम्बई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चाल थी, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे,
1: जी।
0: और ज़्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई
1: जी
0: संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा
1: आजीविका
0: मुश्किल
1: पे
0: होता है,
1: खतरा
0: आजीविका में
1: मंडराने
0: बड़ा
1: लगा।
0: फर्क आ गया।
1: जी
0: तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सेक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, किसी भी हम संगीत निर्देशक को तो जानते हैं कि किस
1: जी
0: फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
1: बिल्कुल
0: है
1: नहीं बताया जाता।
0: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर
1: जी
0: साज न
1: जी
0: साज का।
1: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी,
0: जी
1: जिसमें
0: जी
1: सारंगी का
0: जी
1: खूबसूरत प्रयोग है।
0: जिक्र
1: तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
0: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
1: जी
0: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सेक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे।
1: जी
0: वो इस लिहाज से कि सेक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सेक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही
1: दुख के
0: सारंगी
1: समय
0: भी,
1: और दुख में, दुख
0: और
1: के
0: उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
1: बिल्कुल
0: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना मतलब ये कहाँ से आया, अच्छा उसकी आवाज़ इतनी सुरीली है, वो इतनी खींचने वाली आवाज़ है, सेक्सोफोन की भी और सारंगी की भी, फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर्व
1: जी पंडित कुमार
0: के, हाँ हाँ हाँ
1: गंधर्व।
0: उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबरें आई, तो उनके उस पीरियड में उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ। बल्कि सिर्फ आमाजगा का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई।
1: और बहुत चर्चित हुई और
0: जी
1: ये अनुभूति कथा संग्रह

0: में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम
1: जी
0: जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है। तो
1: असल में देखो, जो वाद्य बजाना वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है। तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते, अच्छा दिक्कत एक ये आती है, एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खास तौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है, वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है, जो मेरे नज़र में तो एक कहानी
0: जी
1: है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है और उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है।
0: जी
1: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ।
0: जी और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसी बी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले
1: हाँ
0: अध्याय का जब अनुवाद आया था,
1: जी जी
0: तो यही कहानी है। कैसे
1: नहीं,
0: किसी
1: वो
0: के
1: कोई
0: मन में आइडिया?
1: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी।
0: हाँ,
1: असल में जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
0: शॉर्ट फिल्म थी कोई?
1: शॉर्ट फिल्म थी, उस लेखक
0: हाँ
1: के जीवन परिचय,
0: जी।
1: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी।
0: हाँ
1: जो जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे,
0: जी
1: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी,
0: जी
1: और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो वो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है।
0: जी तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के लिए
1: नहीं,
0: बना।
1: मैं मुझे अवार्ड नहीं मिला था,
0: हाँ, पर
1: जिनका,
0: आपकी
1: हाँ
0: किताब शामिल थी उस
1: हाँ
0: अवार्ड
1: किताब शामिल थी मेरी
0: जी,
1: जी।
0: तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और वो लोगों तक
1: हाँ
0: पहुंची। हमने भी देखी वो फिल्म,
1: हाँ,
0: बेहतरीन।
1: वो असल में जैसे भी की एक विज्ञापन फिल्म थी। वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को, जो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए हैं उनके लिए वो सब समान है।
0: जी बिल्कुल सही बात है।
1: जी
0: बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
1: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
0: मौजों की रवानी है,
1: मौजों की रवानी है।
0: शोर फिल्म का गाना है,
1: जी
0: सुनते हैं यही गाना।
1: जी

0: अब बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना। फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रोपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं, तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आपको जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं,
1: मैं अपने आपको फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ।
0: जी,
1: और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं, और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं
0: जी।
1: बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं, प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि ये कोई ढंग है चिट्ठी लिखने का?
0: अरे
1: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी, क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग, कैसे वो आ जाते, लेकिन वो आए। उन्होंने दो दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई, मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो एक महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक की जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहाँ, और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ से फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया। फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया।
0: हाँ।
1: मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो तू क्या दिक्कत है? तुम मैं मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा कि मैं छठवीं फेल हुआ, वो मेरा चेहरा देखते रह गए, तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूला एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तो उसमें आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुला, उन्होंने कहा होगा, और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉट किस तरह से लिए जाते हैं, कोई अगर मीडियम शॉट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारुलता।
0: अच्छा,
1: चारुलता फिल्म के

0: जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है। 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
1: जी जी,
0: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताते कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारुलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
1: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
0: नहीं मिला,
1: नहीं मिला।
0: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
1: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई किया हुआ अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
0: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
1: पास नहीं हो सकते,
0: पास नहीं हो पाऊंगा।
1: ओके
0: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
1: जी,
0: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
1: जी।
0: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
1: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
0: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
1: बस
0: तो बस बहुत हो गया।
1: हाँ।
0: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: अच्छा, मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयाँ बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
1: अच्छा तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा आप बात चली है तो उनका भी जिक्र कीजिए।
0: नहीं, वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयाँ बनाने, उसने पूछा ही नहीं, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में एमए है और मैं 6ठी फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
1: अच्छा।
0: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
1: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
0: उसके मतलब कारण पास हो गया।
1: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने पास किया कि नहीं?
0: बिल्कुल पास किया होगा।
1: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
0: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
1: जी।
0: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
1: जी। क्या बात है।
0: हाँ, सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है, नीता के 4-5 भाई हैं और मेरी भी 4-5 बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर के घर में पहुंच जाती है।
1: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, मीठा सा कोई गाना बताइए।
0: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, और पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है
1: जी। साजन बिना सुहागन फिल्म का नाम है, सुनते हैं यही गाना जी।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की, कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी,
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार, तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए
1: जी, जी,
0: तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी,
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूँ। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं। तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहाँ कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में एक बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कस्म कस्में जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उस पर एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया है, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसम। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
0: जी जी,
1: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है, तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब टीम भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
0: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
1: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
0: जी।
1: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी वही कहानी भी अपने रंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
0: तुझी में वाट पाते।
1: हाँ हाँ, अब वो उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में एक कार फंस गई है
0: जी,
1: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही उतनी धसती जा रही है
0: जी,
1: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक

0: बूढ़ी महिला देख रही है वो, जो उसका अतीत है।
1: जी जी
0: तो वो जो सीन है ना, वो आपने नहीं लिखा,
1: उस किरदार ने लिखा है,
0: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्यों को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
1: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं, शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़
0: जाते हैं। सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: एक बहारो मेरा जीवन भी सवारो, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति
1: जी,
0: बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखने
1: वाले? अब आ रही है,
0: आ रही है।
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ।
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसे आमाजगा कहानी जो थी, वो लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त है बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था, बसंत के साथ उन्होंने, और मैंने वो पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया
0: जी,
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया है, और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, वो उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जा करके बांसुरी बजाता था, तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था तो आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे
0: जी।
1: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है,
1: लिखना बाकी है जी।
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने
1: जी
0: थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैठ किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रति संसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में लेखन
1: नहीं, फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती हैं जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है, तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल उस विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी, और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ अभी
0: जी, बिल्कुल
1: है ना, उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
0: जी,
1: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड, ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए
0: जी जी जी।
1: शिक्षा और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के, ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी। फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफ साइड। ऑफ साइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है, तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती हैं। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां,
0: तो ये सब अपनी हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
1: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
0: जी,
1: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
0: जी,
1: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है, तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
1: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ। मोटे मोटे शब्दों में कि किसकी किसी तरह की मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
0: जी जी।
1: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
0: जी जी।
1: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
0: बिल्कुल। तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे?

0: या घर के अंदर
1: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने के जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती है मिठाई तोलने की, उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था। और लिखता था कुछ और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
0: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
1: हाँ एकांत चाहिए,
0: एकांत चाहिए।
1: हाँ, मैं अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
0: हाँ,
1: तो काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
0: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं, लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं।
1: जी, जी।
0: लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
1: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और मैं एक एक वाक को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज़्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता, लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है। और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक, मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है, एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूँ ना भाई, मैं लेखक तो हूँ, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीज़ें, तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
1: उत्कृष्ट चित्रकार
0: ये आप कहते हैं, तो चित्रकारी के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
1: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, मून एंड सिक्स पेनी, हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ हैं, उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ हैं उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है कला में, साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं, बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊँगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा, क्या समझा, पता नहीं। और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया है, और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है, लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया, लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
0: जी जी।
1: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो, लेकिन हाँ। करना बड़े कैनवास
0: बड़े
1: में
0: फलक बढ़िया।
1: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए, और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था।
0: जी जी।
1: उस दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
0: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय, रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
1: नीता जी का योगदान ऐसा है,
0: सहयोग
1: नहीं, बड़ा योगदान है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेली मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियाँ, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन कर

0: ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आप को जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को।
0: जी जी
1: मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही हैं, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, और
0: जी
1: हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है
0: जी
1: आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां
0: जी
1: अब विराम लगाने को कह रही हैं। फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे।
0: जी
1: आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है।

0: और खसखस के लिए एमएसपी 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और करीब 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की और इसे डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने, बनाने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज संवाददाताओं को बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 2 विकेट पर 313 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों जय हिंद। युवा मंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के संक में हम बात करेंगे खेल जगत की, क्योंकि आज बुधवार है और आज के दिन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पोर्ट्स बीट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान में एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है और जापान के आईची प्रांत में खेले जा रहे इन गेम्स में भारत भी हिस्सा ले रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में

हमारे देश की लगातार 20वीं उपस्थिति है और 1951 में आयोजित किए गए पहले एशियाई खेलों में पदार्पण किया था हमारे देश ने। भारतीय दल में 36 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले कुल 495 खिलाड़ी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में भारत की जानी मानी निशानेबाज मनु भाकर और पुरुष कबड्डी उपकप्तान पवन सहरावत देश के ध्वज वाहक बने। इन खेलों का आयोजन जापान के आइची नागोया में किया जा रहा है। 45 देशों और क्षेत्र से 11,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस आयोजन में 43 खेल और 469 मेडल इवेंट शामिल हैं। जी दोस्तों, कार्यक्रम में इस विषय पर आगे भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ करेंगे आपका मनोरंजन फिल्म संगीत के साथ।

0: तुम्हारा।
1: मुझे नहीं खेलना ये खेल, ये भी कोई गेम है?
2: जी हाँ दोस्तों, मौसम कोई भी हो, खेलों का अपना ही एक मजा है। युवा मंच कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एशियाई खेल 2026 विषय पर। बातचीत का क्रम जारी रहेगा, लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh, valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa. गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
6: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
5: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh, valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
2: ब्रेक के बाद युवा मंच कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, युवा मंच कार्यक्रम में स्पोर्ट्स बीट्स के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं एशियाई खेल 2026 विषय पर। आपको बता दें, इन खेलों में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आज तक की बात करें तो 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य पदक मिलाकर कुल 60 पदक जीतकर हम 8वें स्थान पर हैं। देश के इस गौरवशाली सफर में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं और प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 पदक जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इनमें महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने अपनी टीम ऋतु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर के साथ मिलकर देश को स्वर्ण दिलाया। वहीं पुरुष मैराथन में जिला मंडी से संबंध रखने वाले सावन बरवाल ने रजत पदक जीता है। इसके साथ ही चंबा जिला की सीमा कुमारी ने महिला 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा सिरमौर जिला से हैं, जबकि ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर धर्मशाला साई सेंटर से जुड़ी हैं, जबकि ऋतु नेगी भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम आकाशवाणी धर्मशाला की ओर से इन सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं।

0: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
6: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
5: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
7: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। युवा मंच कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स बीट्स के अंतर्गत एशियाई खेलों के विषय में। साथियों, भारत 13 फरवरी 1949 को स्थापित एशियाई खेल महासंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। अब तक के एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हांगझो में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में रहा, जहां देश ने 28 स्वर्ण, 38

रजत और 40 कांस्य पदकों सहित 106 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया था।

0: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों

0: में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स बीट्स के तहत एशियाई खेलों के विषय में। एशियन यानी एशियाई खेलों के जनक की बात करें तो भारतीय खेल प्रशासक गुरुदत्त सौंधी का नाम आता है। उन्होंने सबसे पहले वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक के दौरान सभी एशियाई देशों को एक मंच पर लाने के लिए पैन एशियन मल्टी स्पोर्ट इवेंट एशियन गेम्स का विचार रखा था। उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन हुआ और पहला मुकाबला वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

युवा साथियों, खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। खेल जहां हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं, वहीं हमारी मानसिकता को भी बल देते हैं। आज हमारी सरकारें भी खेलों को प्रोत्साहन दे रही हैं। जब आप देश के लिए कोई पदक जीत कर आते हैं तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम तो रोशन करते ही हैं, साथ ही देश के गौरवशाली क्षणों के भी साक्षी होते हैं। सरकार द्वारा पदक जीतने पर खिलाड़ियों को सम्मान के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी भेंट की जाती है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में रुचि लेना आपके लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है।

युवा साथी उसी गीत के साथ आज का युवा मंच कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। युवा साथियों, जय हिंद।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। छह बजकर 5 मिनट पर सुरमई सांझ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मौजा ग्राइंडिया ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:10 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेती बाड़ी। 8 बजे पेश किया जाएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। गीतकार कुलवंत जानी पर केंद्रित होगा आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम। सुनिएगा 9:15 पर।

होगी आज की आकर्षण रात 10 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा शाम 7 बजे और रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ @9।

कार्यक्रम विवरण में आज बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। केंद्रीय टीम ने आज कुल्लू जिला के मनाली, बंजार और आनी क्षेत्रों के विभिन्न आपदा प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुडू के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं, भूस्खलन प्रभावित गांवों और अन्य क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का जायजा लेकर नुकसान का आकलन किया। एम रामचंद्रुडू ने बताया कि केंद्रीय दल ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया ताकि नुकसान की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
1: सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन किया है। हम लोग चंबा, कांगड़ा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह में जाके हम लोग जहां डैमेज हुआ था वहां हम लोग देखा है और असेस किया है। तो हम लोग असेस तो कर रहे हैं और जब हिमाचल प्रदेश सरकार मेमोरेंडम देगा वो डिटेल्ड रूप से जो डैमेजेस हुआ है डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट फील्ड में, जो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से जब मेमोरेंडम देगा, हमारा टीम विल एग्जामिन द प्रपोजल्स जो हुआ है और जो हम लोग जो साइट्स में देखा है उसको भी ध्यान में रखते हुए स्टडी करके हम लोग रिकमेंड करेंगे भारत सरकार को।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र

0: और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के किसान पद्मश्री से सम्मानित नेकराम शर्मा प्रधानमंत्री के प्रयासों को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। आकाशवाणी शिमला से बातचीत में उन्होंने बताया कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के प्रयासों से किसान एक बार फिर अपने खेतों में मोटे अनाज का उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
1: ये जो शुरुआत हमारा भारत सरकार की तरफ से भी हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की भी कोशिश है, तो लोग तो इन चीजों को भूल चुके थे, मगर फिर भी कुछ लोग इसका जो महत्व है वो समझते हुए आज भी इसको संरक्षण दे रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि आने वाले 2-4 साल में जो हमारा ये मूल अनाज है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर लोग उगाएंगे भी और इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ जो इसका लाभ होगा वो नंबर एक पर्यावरण का इसका बहुत बड़ा अच्छा इसका लाभ होगा, दूसरा जो लोग खाएंगे लोग स्वस्थ रहेंगे, ये हॉस्पिटल की भीड़ भी कम होगी।
0: लाहौल स्पीति जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाशूर मॉनेस्ट्री के समीप लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर विकसित पैराग्लाइडिंग साइट का सफल ट्रायल किया गया। सफल ट्रायल से स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह है। साइट के निरीक्षण के दौरान एसडीएम केलंग कुनिका एकर्स, पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर गिमनर सिंह सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। कुनिका एकर्स ने बताया कि इससे लाहौल में साहसिक पर्यटन को गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
2: शाशुर में हमने एक पैराग्लाइडिंग साइट है जिसका जॉइंट निरीक्षण यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे जो इस साइट का ऑल्टीट्यूड है ये लगभग 3500 मीटर के लगभग है और इसकी जो लैंडिंग साइट है वो बिलिंग प्रपोज की गई है। अगर ये साइट सुटेबल पाई जाती है फ्लाइंग के लिए तो इस साइट को फर्दर रिकमेंड किया जाएगा टूरिज्म डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन के लिए और साथ ही इससे लाहौल के टूरिज्म के जो हमारे एवेन्यूज हैं उसमें एक और डायमेंशन हमारा एड ऑन होगा, क्योंकि ये जो टेक ऑफ साइट है ये शाशुर मोनेस्ट्री के बिल्कुल एडजॉइनिंग लैंड पे है, तो इससे हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको भी एक इम्पेटस यहाँ पे मिलेगा।
0: मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने आज शिमला के लालपानी में अंडर 19 इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में शिमला जिला के 62 विद्यालयों के करीब 400 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती और कराटे सहित विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अनुराधा पोडवाल, मनहर उदास और साथियों के गाए हीरो फिल्म के इस गीत के साथ। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: Take home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सब प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश वासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
4: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
5: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
6: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
5: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: Home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
7: सुरमई सांझ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। AR रहमान की बनाई तर्ज पर लीजिए सुनिए महबूब का लिखा गीत। ये गीत हमने लिया है रंगीला फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
2: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
3: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
2: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई,
6: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
2: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
3: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
2: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
7: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
8: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
7: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, टीएनसी अप्लाई।
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
2: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
3: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
2: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई,
6: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
2: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
2: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई,
6: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
2: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
2: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किए जाने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन से संबंधित। अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी चुग से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा दूरभाष नंबर है 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूलें रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मौजां ग्राहितियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुनने वाले सारे श्रोतियां जो शन्नो ताई दी तरफा ते राम राम कने किसान साथियो आज ट्याले पर मिंजो सोगी एन पंच हो रहा तो पंच जी चले और आयो
1: जी आई गई कने राम राम सन्नो ताई जी कने कार्यक्रम सुना कर दे सारे श्रोतियां जो पंच दी तरफा ते राम राम
0: जी दिखा हाँ दूनी तुहाने राम सलाम तक करी ली है ना
1: जी
0: कने आज मैं दिखा दी पंच हो रहा बढ़िया टोरा कड़ी के ट्याले पर आयो ना
1: जी
0: बे मिंजो लगा था कुत की जाना कने काली बड़ी है
1: बिल्कुल दिखा तो हाँ आजकल जेड़े से आने वाले समय काफी सारे जेड़े सड़े त्योहार न सह भी अवा करते और कने कने आजकल जेड़े से श्राद्ध भी सड़े पितरां दे जेड़े से चले होने
0: चले होने जी
1: तो इन दिन च भी हाँ जो जेड़े से इक्की दुए दे घरे जाना होंदा है कने मैं भी कुछ गया था है ना
0: अच्छा
1: साढ़े पड़ोसी ने जितू श्राद्ध था कदा तिथु भी जाना होया कने फिर मेले चलो कने कने चलते चलते ट्याले भी जाए होंगे ट्याले हुई के भी आए होंगे कने थोड़े कने भी गलबात हो जानी कने साढ़े जेडे स्रोते हैं तिना कने भी जेडी इसे गलबात साड़ी हो जानी है ना
0: बिल्कुल भाई एक पंथ कने दो काज
1: जी
0: दिखा किसान साथियों भई अहो इथू की जिम्मेदारी है तो पता ही होंगे भी हनवाणी है कने अहा इथू आने तो पहले भी अपने कई काम कार सोचे होंगे
1: जी
0: जिया कोई मातड़ तमातड़ कोई गोज डल लेंदी तो पट्टियां सट्टिया है
1: बिल्कुल
0: कोई घाय का पुल ले चलते पे ने कने सोगी सोगी अहा सोचते भई कार्यक्रम ने जुड़े न तो अपने ट्याले के साथियों ने भी मिले होंगे कने बत्ता संध्या होंगे तो सो हां दे काम हल हो जाते
1: बिल्कुल और दिक्कत अजकल साढ़े किसान भाई है तो वैसे ही टाइम नहीं है ना
0: जी
1: सैरी दे जेड़े काम न से काफी सारे पे होने गाय बढ़ने का काम पे है कन्ने मक्की का काम पे है कन्ने धान भी जेड़े से तैयार हो गई है ना
0: तैयार भी होई है कन्ने जेड़ी एक दो बरखा हुई है ना
1: जी
0: इसने थोड़ा जा काम फिरी पिछे रही है
1: हां जी
0: कजो की कई पाहियां थोड़े तान लगी पियो थे निसरना कन्ने अहां दे किसान ना बढ़ाई दी पूरी तैयारी शुरू करी ती थी
1: जी
0: पर खरा किता जे जिन्हां हाले तक डाटी नी चलाई थी मतलब
1: हाँ जी हाँ जी
0: कहो जे तान बड़ी के तुम पट्टियां सटी देंगे कने बरखा जी साबे हुई है ना तो तिना खराब हो जाना था
1: बिल्कुल
0: तो चलो थोड़ा दिया वक्त दे ता कने दो तीन दिन हो भी गई था थोड़ा मौसम भी ठंडा हुई है
1: जी जी
0: कने दिखा हूं सामने दौलादार दे पहाड़ा पर हल्की हल्की जड़ी बर्फबारी हुई ना
1: हाँ जी
0: इसने संजा भी आ गा हाँ मैं बोलती थोड़ा कोटी स्वेटर भी कढ़ना पवा था
1: बिल्कुल जी कने हुण ए तां थी साढ़े अपने अजकल दे जिहड़े कम्मकार ने तिहदे बारे च गलबात और कन्ने ही अहां गल जिहड़ी इस अपनी जानकारी दी भी करनी हो जानकारी च अज अहां गल करनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे बारे च
0: है ना जी दिखा ए योजना ऐसी है कि जलू अहां इहदे बारे च गल शुरू कर देना तो जितने भी श्रोते या किसान है जो गल जो सुन दे ते मैं तो बोलती सा लगभग सारे इस योजना ने जुड़े होने
1: बिल्कुल बिल्कुल और साढ़े जिहड़े जितने भी किसान पात्र किसान जिन्हां दी जिहड़ी सीमांत किसान छोटे किसान है ना जो उन्होंने फायदे वास्ते जिहड़ी इस आर्थिक सहायता साढ़े जिहड़ा केंद्र सरकार है साढ़े किसान जो दिया करती है और ये आर्थिक सहायता हर वर्ष जिहड़ी इस 6000 रुपए है जिहड़े इस दिया करती है तीना किस्तां च है ना जी
0: किस्तां दे वास्ते
1: बोलने का मतलब है कि 2000 रुपए जिहड़े इस तीना किस्तां साढ़े किसान साथियों के जिहड़े खाते ने तीना दे खाते च जिहड़ी इस सीधी राशि जिहड़ी इस केंद्र सरकार दिया करती है ताकि अहां दे किसान जेड़े से जिन्हां दा जो भी छोटे मोटे खर्चे होंदे ने खेती बाड़ी दे संबंधित है ना
0: बिल्कुल
1: या कोई बीज लेना है या कोई खाद लेनी या फिर कने कोई ऐसे कोई यंत्र लेने ने है ना जी
0: कोई भी खेती बाड़ी ते जुड़िया कम होवे खाद दा जियां तुहां गला दे कोई औजार हो ना कुछ भी होवे ताकि किसान जो खेती बाड़ी विच कोई समस्या ना होवे
1: जी जी
0: कने ये जेड़ा वितरण करदी है सरकार इस पैसे दा ये किस्त हर 4 महीने दे अंतराल च किसाना दे खाते च पई जांदी
1: बिल्कुल
0: कने इस ते की होंदा जितने भी किसान हैं पूरे देश दे सह अपने खेती बाड़ी दे कम आसानी ने करी सका दे
1: हाँ जी और इस बीच अहां देखिए कि अजकल साढ़े किसान भाई जेड़े से जियां हुण अगली फसल दी जेड़ी तैयारी करनी है या फिर पिछली फसल है तिसाई भी समेटना था कई बार जेड़े से अहां जो कई तरह दे जेड़े से खर्चे पई जांदे ने जियां कि हां कटाई दा काम करना है या फिर इसकी थ्रेसिंग करवानी है ना
0: कुछ भी
1: इसदे भी पैसे सानू देना पौंदे ने और कन्ने कन्ने अगली फसल की तैयारी करनी है तो इस बीच अहां बीज लेने न छोटे मोटे यंत्र लेने न या फिर और कोई ऐसी चीज सानू जरूरत पई जांदी है ना
0: बिल्कुल कन्ने कई बार अहां कई किसान गलांदे सुनदे भई अहां यो किस्त नहीं पियो तो सारे अहां दसिंदे भई कई बार थोड़ा देर सवेर हो जांदी
1: हां जी
0: कन्ने सरकार जेड़ी ये सारे ने तुहाने वादा कीता ते सारे दे खाते विच किस्त पौंदी पौंदी
1: पौंदी पर कई बार अगर नहीं भी पौंदे ते इस वास्ते अहां जो जेड़े से अपने नजदीकी दे लोक मित्र केंद्र ने
0: ना जाए के पता
1: तू जाए के जेड़े से पता कर लेना कने कई बार क्या होंदा कि सरकार समय समय पर जेड़े से केवाईसी जेड़ी इसे करवांदी है ना तो केवाईसी भी जेड़ी इसे करवाना जरूरी है समय समय पर और केवाईसी वास्ते अहां जो अपना आधार कार्ड और जमीना दा जेड़ा परचा होंदा
0: सह लगदा जी
1: लेके जाना और कन्ने ही मोबाइल नंबर जेड़ा कि तिस कन्ने लिंक है है ना जी।
0: बिल्कुल, कन्नै इन्हां कागजां लगाने दा यही मकसद है सरकारा दा, बई बोलदे ना इक साफ सुथरा जिहड़ा लोकां तक किसानां तक सम्मान निधि योजना से पुज्जे।
1: हाँ जी, यानी कि बोलने दा मतलब ये कि जिहड़े किसान एक्चुअल च जिहड़ी खेती बाड़ी करा करदे ने तिन्हां जो ही जिहड़ा से ये आर्थिक सहायता मिलनी है, यानी कि जिहड़े किसानी खेती बाड़ी नहीं करदे ने तिन्हां जो अगर ये चीजां मिलदियां तां मतलब कुछ इसदा फायदा जिहड़ा से
0: ठीक नहीं
1: मिलदा ना
0: जी।
1: साडे जिहड़े किसान ने जिहड़े कि खेती बाड़ी करदे ने उहनां जो
0: प्रोत्साहित
1: करने वास्ते जिहड़े से प्रोत्साहन राशि जिहड़ी से दित्ती जांदी
0: जी। किसान साथियों, हम उम्मीद करनी है कि तुहां भी इस योजना दा लाभ लै दे होणे ने, कने तुहाडे भी खाते विच तुहाडे खेतीबाड़ी वास्ते मदद वास्ते ये पैसा पुज्जा दा होना है
1: जी।
0: तां इसा ही जानकारी ते बाद पंच जी हुण थोड़ा देया चलिए रौनक ही तरफ।
1: हाँ जी,
0: तां टियाले पर लगांदे ने रौनक।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
3: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जी तो हाँ, ये कुछ एक स्नेह और उससे पहले लोग जड़े से सुनिया कने इसके बाद हाँ फिर ते जड़े से जानकारी दी तरफ चल देना। और जानकारी च देखा तो हूँ सर्दियों का मौसम आएगी और हिमाचल प्रदेश में जड़े से हाँ रबी सीजन और बागवानी का जड़ा से मुख्य समय चली पे है। और इस बीच अहाँ दे किसान भाई, बागवान भाई जड़ी से उन्होंने जीविका का मुख्य आधार ही जड़ा से किसानी बागवानी का होंगे है ना
6: जी।
5: तो और इस बीच दिखा तो हाँ साढ़े हिमाचल प्रदेश में जड़े से लगभग 80% जी खेती बाड़ी का कम है से बारिश पर ही जड़ा से निर्भर है ना।
6: बिल्कुल, कने इस दे कने दिखा स्याल है दी बरखा कने बर्फबारी इन फसलों वास्ते बड़ी जरूरी होंगी।
5: बिल्कुल,
6: कुछ कहे कि बागवान वास्ते बोलते ना हाँ बर्फ पौंदी सत्य ना जी हाँ पहाड़ी इलाके विच जड़ी बागवानी चलती
5: हाँ जी
6: तीन यो बर्फबारी होना भी बड़ी जरूरी है।
5: बिल्कुल,
6: तो इस हिसाब ने दिखा हाँ बुले पहा बरखा जरूरी, पहाड़ी इलाके विच उपरा वास्ते कुछ और जरूरी
5: हाँ जी।
6: तो इन सब चीजा दे मेल मिलाप ने खेती बाड़ी चलती।
5: बिल्कुल, और इस विच दिखा सनताई जी जड़ी साड़ी मुख्य फसलां ने जिस विच गेहूं है, जौ है, दाली न, इसदे कन्ने कन्ने फसलां दे कन्ने कन्ने साड़े किसान भाई जड़े से सब्जियां भी जड़ी इनसे उगांदे ने है ना।
6: बिल्कुल,
5: जिस विच अहां दे सब्जियां दी गल करी ता सब ते पहले मटर होंदी है ना, मुख्य फसल मटर दी है। सर्दियां दे विच जड़े से मटर दी जड़ी मांग है बाजारा विच बड़ी ज्यादा होंदी है ना। और इस मांग जो दिखते हुए साढ़े किसान भाई जड़े से अपनी खेती बाड़ी के कम कार जड़े से मटर की खेती जी से मुख्य तौर पर करते हैं।
6: बिल्कुल, कहने गलांदे भी मटर जलू हाँ सलाड़ू सगाड़ू च लगाते ना
5: जी,
6: तो इसते मिट्टी की जी उर्वरता शक्ति है सभी बदती।
5: हाँ बिल्कुल,
6: कने इस दे कने जे गल करिए गोभी वर्गी फसलां जियां दिखा फुल गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, ब्रोकली
5: हाँ जी,
6: कने ब्रोकली जालू गला देता ब्रोकली मैं देखिया कई बारी घरे भी बना ना
5: हाँ जी,
6: तां ते निके चुके खाना पसंद नहीं करदे
5: जी जी,
6: पर तिने समझ नहीं है वे जेड़ी ये ब्रोकली गोभी है
5: हाँ जी,
6: इसे चलो हाँ आम भाषा विच गोभी गला दे ते भी गोभी दी इक मतलब अगली मतलब किस्म है
5: हाँ जी।
6: इस दी बाजारा विच बड़ी मांग है, बड़े बड़े होटलों विच बड़ी मांग है।
5: बिल्कुल, और औषधीय गुण भी है ना इस विच
6: हाँ, इस कारण
5: इस दे अलग अलग तरह दे जड़ी से सब्जियां बनदी है ना, सूप बनदे दे है ना, अचार बनदे ना
6: जी। दिख लो कई बार हम बनाइए तो हाँ स्वाद दे विच उतनी ये नहीं लगती
5: हाँ जी,
6: तो शायद तिस कारण घर मना करदे पे हां नहीं खानी ब्रोकली बनाई हो
5: जी जी।
6: पर जे तुहां जियां गला दे पे गुणा दी गल करिए ते बड़ियां बड़ियां बीमारियां जो भी बोलिया रुकदी
5: हाँ।
6: कने और भी अहां दे शरीरिक कई चीजां वास्ते फायदेमंद है। तो अहां दे किसान हुण इत्थों हाँ जे टियाले दे अखे बखे गल करिए कांगड़े दी गल करिए
5: हाँ जी,
6: तो अहां दे किसान बड़े बड़े स्तर पर भी इस ब्रोकली दा उत्पादन करा दे।
5: बिल्कुल, और इन सब्जियां दे कन्ने कन्ने अहां होर भी जिहड़ी इसे नकदी फसलां
6: दी
5: तरफ लगांदे ने, और इस विच होई है लहसुण है, साडा प्याज होई आ, फिर शिमला मिर्च है, मूली है, गाजर है, पत्तेदार सब्जियां ने जियां कि पालक है, मेथी है,
6: इन वास्ते समय बड़ा उचित है
5: जी।
6: कने हुण गां दी ठंडी दी बहां दे किसान सोच विचार शुरू करी ते जे लसन लगाना है या कुण कुण सब्जियां लगानियां ने, तो तिना दा विचार बिल्कुल सही समय पर है
5: जी जी।
6: कने सह जियां हां दसा दे वे दे दियां अगर फसलां सब्जियां सह लगान
5: हां जी
6: तां बड़ा अच्छा मुनाफा कमाई सकदे।
5: जी ते सानू ताई हुण अगली गलबात ते पहले हुण चलना लोक जनकार दी तरफ और सुनना एक प्यारा दिया लोक गीत।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
0: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
0: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa. जी दसनताई अहाँ कुछ एक स्नेह और लोग गीत जोड़ा से सुने हैं। इसके बाद हाँ फ्री ते जड़ी से गलबात करनी है जी कि हाँ पहले भी गल कर करते कि सर्दियाँ चाहाँ दे जड़ियाँ
4: कृषि कने बागवानी जी
3: बिल्कुल बिल्कुल उस बीच हाँ गल की कि अहाँ दे मुख्य फसलन जौ है सड़ा चना है ना जी,
4: जी।
3: और कन्ने कन्ने गेहूँ की भी फसल होंगी और इसके बाद अहाँ गल की सब्जियों के बारे च और कन्ने कन्ने अहाँ दे जड़ा हिमाचल है इस जो फलों का कटोरा भी जिहड़े से बोलिया जाता और सर्दियों के मौसम च इत्थों जिहड़े से बड़े सारे फल जिहड़े से उत्पादित किए जाते हैं तो इस विच सब ते पहले गल करनी आ सेब की तो सेब और कने कने और कई तरह दी गुठलीदार फल जिहड़े से साढ़े
4: हिमाचल विच उगाए
3: जाते हैं बिल्कुल और इस विच जियां कि सेब होई आ पलम है आड़ू है और खुबानी है इन्हों के पेड़ जो जेड़े से सर्दियों के मौसम से जेड़े से ठंडक की अवधि की जी से बड़ी जरूरी हो जाती यानी कि अगर अच्छा उत्पादन सो चाहिए साढ़े किसान भाइयें साढ़े बागवान भाइयें तो सर्दियाँ जी सर्दियों के मौसम च अच्छी बर्फबारी होना चाहिए और एक जिसी बोलते चिलिंग और जेड़ा से पूरा
4: ठंडा जी जी
3: इसते क्या होंगे कि साढ़े जेडे जे फलदार पौधे इस फुलां दे अच्छे बड़वार होंदी और कन्ने कन्ने उस विच जेड़े से फलां दा जेड़ा साइज होंदा आकार होंदा सह भी जेड़ा से अच्छा बनदा है ना
4: बिल्कुल कन्ने दिखा सर्दियां जेड़ा मौसम है इस विच अहां दे कोई अगर किसान बागवान भाई बागवानी दा कम करना चाहते हैं तो सर नोए बाग भी लगाई सकते
3: जी
4: जेड़े पुराने पेड़ पौधे तिना लगाए होन तिना दी कांड छंटाई भी करी सकते
3: बिल्कुल और कन्ने कन्ने अहां दिखा जलवायु परिवर्तन दे कन्ने साढ़े जेड़ा ए साढ़े जेड़े खेतीबाड़ी दे काम कारण बागवानी दे काम कारण सब भी जेड़े से प्रभावित होआ करदे ने हैना
4: बिल्कुल
3: यानी कि पिछले कुछ बरसा ते अहां सालां ते दिखा करते कि हिमाचल प्रदेश विच जेड़े से सुखी सर्दी जेड़ी से पवा करदी है यानी कि बर्फबारी जेड़ी से

0: घट
1: थोड़ी घट यही
0: जी,
1: है
0: जी
1: ना। और इस बीच क्या होता कि बर्फ दे कन्ने कन्ने बारिश दी कमी दे कारण जड़ा से मिट्टी बिच जड़े से नमी
0: घटा दी
1: घटा करती है। इससे क्या होता कि साढ़े जड़ा सेब का उत्पादन और जड़ी साड़ी रवि फसल न तिना का उत्पादन जड़ा से सब भी घटी जाता है, यानी कि
0: पैदावार च असर पवा दा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इस दे कन्ने कन्ने अह दिखा करते हैं कि फसलां जो जड़ा से अत्यधिक पाले दे कारण और कोरे दे कारण जड़ा से साड़ा फसलां जो बचाना एक साढ़े किसानों वास्ते एक बड़ी चुनौती बनी हुई है ना।
0: बनी हो कहना दिखा चलो बोलते ना कोई भी मौसम है जे ज़्यादा बरसात हो जाएगी तो भी फसलों की देखभाल किसानों वास्ते जरूरी हो जाती,
1: जी
0: जे गर्मियाँ ज़्यादा पई जाएंगी तो भी अहो पानी की चिंता हो जाती।
1: हाँ जी
0: कने जो तुम पहले गलाए भी थोड़ी खुश्क सुखिया सर्दियाँ हुई तो तिस कारण दिखा पहाड़ा पर बर्फ नहीं होगी तो अहाँ के किसानों पूरा साल भर दिक्कत रही।
1: बिल्कुल, यानी कि समय समय पर अगर साढ़े
0: हर चीज़ होना चाहिए
1: बिल्कुल समय समय पर बर्फबारी होए अच्छी मात्रा च होए तो क्या होंगे कि साढ़े जेडे पानी दे स्रोत न से भी साल भर चली रहते और कन्ने कन्ने साड़ी जेडी जमीन है इस बिच नमी जेडी इसे
0: बनी
1: लगातार
0: रही
1: बनी रहती है।
0: जी।
1: और साढ़े जेडे अहाँ खासकर सेब और गुठलीदार फलों की गल करा करते तो तिथु जेडे से ठंडक की जेड़ी
0: बड़ी
1: ठंडी की
0: जरूरत
1: जेड़ी अवधि है सह भी बधी आती है, तो
0: जी
1: इसते क्या होंगे कि साड़ा उत्पादन जेड़ा से अच्छा होंगे और साढ़े किसान भाई हैं जेड़ा से मुनाफा भी जेड़ा से इस बिच दिखने जो मिलता है ना।
0: मिलता। कने बिल्कुल अच्छी गल की तू हाँ बे किसान इतनी मेहनत करता इतने महंगे महंगे बीज बोजे कने अपने सौ कम कार छड़ी करी से खेतीबाड़ी बिच बिल्कुल डूबे आंदा
1: जी
0: तो फिर भी जे अगर पूरी मेहनत करने के बावजूद भी किसाना जो पूरा फल ना मिले पूरा उत्पादन ना मिले तो किसान फिर आखिर बिच निराश हो जाता। फिर कई बार अं सुनने मिलता भी जी हाँ फलानी जमीन खिली छड़ी थी हो
1: जी
0: कने असा हूँ नहीं बाह दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर मौसम भी साथ दिता रहे कने जी सरकारा भी कई किसानों वास्ते अच्छी तो अच्छी योजना लियादी रह दियाँ तो तिना जे पूरा किसानों ये पता हुआ तिना का लाभ सह लेंदे रहन तो ये जी खेतीबाड़ी है बड़ी सुगम हो सकती।
1: जी, यानी कि अहाँ जो जड़े से अपनी योजना का भी सहारा लेना और कन्ने कन्ने वैज्ञानिक तरीके जड़े से तिना
0: सभी
1: जो
0: अपनाए
1: अपनाते हुए जड़े
0: जी
1: से अहाँ की जड़ी जलवायु परिवर्तन की जड़े चुनौतियां ने इस कन्ने हाँ जड़े से निपटी सकते हैं।
0: निपटी सकन किसान साथी दिखा जानकारियां तो चलदियाँ रहनियाँ
1: जी
0: कन्ने अहाँ उम्मीद करनी है भी जड़ी भी जानकारी अहाँ तुहां तक पहुँचाते हैं से तुहां कुथे ना कुथे जरूर से मददगार साबित होंगी होवे। कन्ने इस दे बाद पंच जी टियाले पर मैं बोला बड़ी देर सुन मसुनी नहीं पानी
1: जी
0: कन्ने ले चलना अपने श्रोतियां अपने किसानों जो सारे जो ही लोक झनकार की तरफ तो सुन देन एक मिठा दिया प्यारा दिया लोकगीत पर तिसते पहले कुछ स्नेह।
1: जी
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.

0: है
1: हाँ
0: कजो
1: जी
0: कि हिमाचल दे जेड़े लोक गीत है ना सह बड़े प्यारे लगते जालू संझे दे वक्त सह हाँ दे ट्याले पर गूंजते ना
1: जी
0: कने इतू ते सह हाँ दे किसानों के घर घर तक पुजते।
1: जी तो इसी गलबात कन्नै हुण साढ़े कार्यक्रम मौजा कराई दिया दा समय जिहड़ा सै इत्थों ही संपन्न हुंदा। हुण सांझे दूनी जो दिया अनुमति। अच्छा
0: अच्छा
1: जी,
0: जी,
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा कराई दिया। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से
2: नमस्कार,
1: समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
3: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
2: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,779 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली

0: में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Lalema Aneja Dang. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
3: Rabi season ki MSP badhane se
4: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
3: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue hain.
2: The minister said that the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System ITMS project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet today also approved the Green Energy Corridor GEC Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. The centre has approved procurement worth 5,547.99 crore rupees at minimum support price MSP under the Price Support Scheme PSS for major pulses and oil seeds in Uttar Pradesh, Karnataka.

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे श्रोतियों का ट्याले पर स्वागत करते हैं। किसान साथीओ, अज ट्याले पर है तुसां दी अपनी शन्नोताई कने मिंज सौगी हैं पंच होरां। तो पंच होरां पहले भी इत्थों थे पर जरा करी बोलते ना मित्र चार हो तो ट्याले पर कई संझा दे बेले मिली जाते। तो इन्हां सोचा भई दो घड़ियां ताई गप्पां बैठी हो तो मैं अपने दोस्तों यारां ने गलबात करी हुंदा।
1: जी जी, तो मैं भी जिहड़ा सै कार्यक्रम च एक बारी फ्री ते हाजिर हो गया और सारिया श्रोतियों का भी यहाँ स्वागत करदे ने। और सन्नोताई जी तुहांजो भी राम राम।
0: जी राम राम तुहांजो भी।
1: कन्ने दिखा तुहां अजकल गपशप भी लगा दी और कन्ने कन्ने जिहड़े सै कामकार साढ़े जिहड़े सै कन्ने कन्ने खेतीबाड़ी दे चले हो दिखा इन्हां दिनां च अहां जो तीन चार गुणा काम पई गए ने ना
0: ज्यादा।
1: इक्की तरफ घा वढ़ने का काम है, दूए तरफ सांजो साडे
0: धान
1: भी पकी पई हो, कन्ने कन्ने छलियां दा भी काम चलिया है ना।
0: बिल्कुल, बोलने दा मतलब ए जिहड़ा वक्त हुंदा ना बरसाती ते बाद अहां दा किसान बिल्कुल व्यस्त हो जांदा कि जो कि जिहड़ी फसल तैयार होई हुंदी ते आपां भी ध्यान हुंदा ते इहदी भी पूरी सैंत पैंत चली हुंदी।
1: हां जी,
0: तुहां जिहां गला दे बेई छलियां दे छलाटे रखा दे कोई कि गां पशुआं वास्ते सै संभालिक रखना हुंदा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाई के जिहड़ा सै अहां जो अजकल साढ़े जिहड़े किसान भाई ने बागवान भाई जिहड़े इन सै काफी व्यस्त ने अपने कम्मां कारां च और इस दे कन्ने कन्ने अहां समय समय पर ट्याले पर भी बोलदे रहिंदे कि सांजो कोई भी अगर काम शुरू नया काम शुरू करना खास करता इस वास्ते सांजो प्रशिक्षण लेना जिहड़ा सै
0: बड़ा जरूरी
1: हो जांदा है ना।
0: बोलदे कोई भी काम सिखिया हो ना तो इस विच घाटे दा जिहड़ा काम हो सै बिल्कुल घटी जांदा।
1: हां जी,
0: सिखी के काम कीते हो तो हां गलाई सकदे भई जी अहां ए काम सिखिया कन्ने इसी अहां पूरी तरह सफल बनाई सकदे।
1: बिल्कुल, और अहां बल अगर खुली खेतीबाड़ी है खुली जमीन है तो इस विच अहां जिहड़े सै अपने खेतीबाड़ी दे कम्मां कारां दे कन्ने कन्ने होर भी छोटे मोटे काम जिहड़े इसे सांझे शुरू करना चाहिए
0: करना चाहिए।
1: अगर खुली जमीन है तो अहां जिहड़ा सै नर्सरी दा काम भी जिहड़ा सै शुरू कर

0: सकते हैं ना, जिस
1: बिल्कुल
0: विच
1: जी
0: हाँ दे तरह तरह की छोटी छोटी पौध तैयार कर सकते, फूलों की पौध हुई, चाहे से साढ़े जड़े औषधीय पौधे ने तिना की पौध हुई है ना
1: साग सब्जियां दी हुई
0: जी।
1: कई चीजां दी पौध तुहां नर्सरी विच तैयार कर सकदे। कन्ने तुहां जी अगला दे वे नर्सरी प्रबंधन इस ते की हुंदा जेड़े हां दे ग्राएं दे युवा हैं किसान हैं कन्ने हां दियां महिला भैणां न
0: जी
1: तिना जो स्वरोजगार दे अवसर मिली सकदे।
0: बिल्कुल, और नर्सरी जो शुरू करने वास्ते है जेड़ा से हाँ जो प्रशिक्षण लेना जरूरी हो जाता, और ये जरूरी कहे हो जाता क्योंकि हाँ जो कई तरह की चीज़ें जड़ी इसे ध्यान च रखना पौंदियां ने, जियां कि हाँ कोई नर्सरी की शुरुआत जड़ी इसे करा करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हाँ नर्सरी का समझो जेड़ा से जगह का चयन करना पौंदा, यानी कि नर्सरी ऐसी जगह होना चाहिए जित्थों की मिट्टी पानी कने तिथु दी धुप और जल निकासी दा जेड़ा सा उचित प्रबंध जेड़ा सा होना चाहिए, यानी कि मिट्टी भी अच्छी उर्वरक पूर्ण जड़ी से होना जरूरी है,
1: जी
0: पानी दा भी जेड़े से उपलब्धता होना तिथु जरूरी है, कने धुप भी जड़ी से अच्छी पौना चाहिए इस जगह पर।
1: बिल्कुल कने जी हाँ गल करे देवे नर्सरी प्रबंधन वास्ते तुहां जे प्रशिक्षण लेना चाहन ता इस वास्ते हाँ दिया भारत सरकार हुई राज्य सरकार हुई
0: जी
1: कने कई और निस्तारा पर भी कई बारी निशुल्क कने या तो फिर घट ते घट पैसे पर प्रशिक्षण करवाए जांदे।
0: बिल्कुल, और सन्नताई जी कन्ने कन्ने चलो हाँ नर्सरी दा जड़ा जगह दे चयन होई जांदा, तो उसके बाद हाँ जड़े नर्सरी जो लगाने वास्ते बीज दा जड़ा से चुनाव करना समझो जरूरी होई जांदा है ना,
1: जी
0: हाँ दी जलवायु दे हिसाबे ने हाँ दे जगह दे हिसाबे ने जड़े से हाँ जो बीज दा चुनाव जड़े से हाँ जो करना पौंदा, और ताकि साड़ा जड़ा बीज ऐसे आने वाले समय च समझो जड़े से अच्छा उत्पादन जड़े से दे सके है ना।
1: दे सकते जी
0: इसके कन्ने कन्ने बीज बाने दी जड़ी विधियां ने सभी अलग अलग विधियां, जियां कि सीड बेड बनाई के हाँ बीज लगाते हैं, या फिर ट्रे हुई या पॉली बैग होंगे न इस
1: जी
0: बीच बीज लगाते, यानी कि अलग अलग फसलों के अलग अलग पौधे की जी इसे अलग अलग जी इसे बीज लगाने की विधियां होंगे ने, तो इन्हें जो भी सीखना जोड़ा सा प्रशिक्षण लेना इस बीच बड़ा जरूरी हो जाता
1: जियां तुहां गला दे पे जियां फुल्लां दे ट्रे चलाने या बैडां चलानी
0: जी।
1: तां अगर जे हां बिना प्रशिक्षण ते कम करगे तां लगाई तां देणे पर तिना सह बूटियां तैयार होना नहीं होना
0: हाँ
1: तिहदी
0: जी
1: कोई गारंटी नहीं।
0: बिल्कुल
1: कने जल वहां सीखी करी कोई काम कर दे ना तां हां पूरा पता हुंदा पूरा नाप तोल हुंदा हर चीजा दा। कने दिखा हां प्रशिक्षण दी गल करन तां कई संस्थान ऐसे ने जेड़े प्रशिक्षण करवा देन।
0: हाँ जी जी इस विच जी कि यहाँ गल करिए कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि देश के हर जिले से जेड़े से कृषि विज्ञान केंद्र जेड़े खुले हुए हैं ना,
1: जी
0: और इन्हों का मुख्य काम भी यही है कि सारे जेड़े स्थानीय किसान या फिर युवा न इन्हें जो जेड़े 3 दिनों ते लेके जेड़े से 1 महीने तक का जेड़े से निशुल्क प्रशिक्षण जेड़ा सा बिना फीस दे हिसाबे ने जेड़े से दिते जाना, और इस विच जेड़े से खासकर साढ़े जेड़े नर्सरी प्रबंधन का व्यवहारिक प्रशिक्षण जेड़े से साढ़े कृषि विज्ञान केंद्र जेड़े से इस विच दिंदे ने है ना, और कन्ने कन्ने ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, ये जेड़ा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है ये भी व्यावसायिक नर्सरी वास्ते जेड़ा सा समय समय पर साढ़े किसानों वास्ते साढ़े बागवानों वास्ते जेड़ा सा प्रशिक्षण दिंदा रहता है ना
1: जी
0: जी।
1: कई कार्यक्रम ऐसे होंगे रहते ना दे अंतर्गत जिस भी चाहते किसान जाई करी निशुल्क या बिल्कुल घट पैसे विच प्रशिक्षण ले सकते।
0: बिल्कुल, और इस दे कन्ने कन्ने कृषि विश्वविद्यालय भी है ना जेड़े कि हर राज्य बिच जेड़े से कृषि विश्वविद्यालय और बागवानी विश्वविद्यालय ने, जियां कि साड़ा इथु कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है और साड़ा बागवानी विश्वविद्यालय नौणी जिला सोलन बिच
1: जी
0: स्थित है, और तिथु भी जेड़े से समय समय पर इन्हां दे संबंधित जेड़े से ट्रेनिंग कोर्स जेड़े से करवाते रहते हैं। इसके कन्ने कन्ने कौशल विकास योजना है, इस बीच प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नर्सरी वर्करा जो कन्ने जेड़े गार्डनर न तिना जो जेड़े से 2 ते 3 महीने का जेड़ा से पूरा निशुल्क सर्टिफाइड कोर्स का जेड़ा से प्रबंध उन्हें जो करते हैं, और साढ़े किसानों बागवाना जो एक उचित प्रशिक्षण जेड़ा से इस क्षेत्र बिच दिंदे हैं।
1: जी तां हां ये उम्मीद करनी है जियां अहां दे जेड़े नजदीकी कोई बागवानी बोर्ड है ने या कृषि विश्वविद्यालय ने कि
0: जी
1: तू तुहां जरूर समय समय पर जा करा कने पूछा करा बे कोई ऐसी ट्रेनिंग तनी चली हुआ है जिस दा अहां फायदा ले सकन।
0: हाँ जी
1: कने दिखा प्रशिक्षण जालू दिंदे ते इस विच बड़ियां चीजां सीखने मिलदी हैं पंच जी तुहां वाल पंचायती तां मैं बोलदी बड़ियां चीजां आउंदियां रहंदियां
0: बिल्कुल
1: कने
0: बिल्कुल
1: तुहां कोरमा विच लोकां ने सांझियां भी कर दे।
0: हाँ बिल्कुल, ग्रामीण स्तर पर भी कई तरह के जेड़े से प्रशिक्षण कृषि विभाग द्वारा या फिर साढ़े बागवानी विभाग द्वारा जेडे से करवाए जाते हैं, तो हाँ जो जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर इन प्रशिक्षण च भाग लेकर फायदा जेड़ा से लेना चाहिए
1: लेना चाहिए। कने जरूर तुहा अपने कृषि विज्ञान केंद्र नजदीकी होन तिथु भी जाया है, जिया तुहा गलाए पालमपुर है, तो तुहा कोशिश करा करा भी जालू भी तुहा तीन चीज लंघन या कुछ कम्बे के माध्यम से जान, तो जरूर हाँ किसान बागवान पशु पालक भाई जरूर जा करा,

0: जी ता ए सुनिया हां प्यारा दिया लोक गीत कने उम्मीद करनी है बई संजा दे बेले हां दे किसान आयो कने सारे श्रोतियां जो ए लोक गीत पसंद भी आया होना है
1: जी।
0: इस ते बाद पंच जी गां जेडी कोई जानकारी हां दे किसाना बागवाना ने सांझी करने वाली है ता मैं बोलदी जरूर करना चाहिदी
1: जी,
0: कजो की कार्यक्रम है खेतीबाड़ी आहां चांदे भी खेती ते जुड़ी हो हां दे किसान वास्ते कोई भी गल ऐसी ना छूटे ना रह जिदा से लाभ ना ले सकन।
1: बिल्कुल सन्नताई जी, मैं थोड़ा सारा समझा करदा कि आहां हुण सुननी एक भेंट वार्ता
0: जी।
2: जैसे कि हमारे किसान भाई

0: जानते हैं कि अगर कोई भी कार्य समूह में किया जाए तो उसमें जो है मुनाफा हो सकता है, उसमें ज्यादा जो है तरक्की हो सकती है, ज्यादा जो है सफल हो सकता है। आज हम स्वयं सहायता समूह क्या है और इससे जो है हम खास करके महिला किसान जो है अपना उत्थान कैसे कर सकती हैं, इस संबंध में बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतू शर्मा जो कि वैज्ञानिक हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: तो सबसे पहले हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि स्वयं सहायता समूह जो है ये किस तरह से कार्य करता और आप इसका जो है गठन कैसे करते हैं।
1: देखिए, स्वयं सहायता समूह जो है उसमें 15 से 20 महिलाएं जो हैं वो इकट्ठे होकर एक समूह बनाती हैं और हर महीने वो लोग एक निश्चित राशि तय करते हैं जो वो लोग हर महीने उसको इकट्ठा करेंगे। प्रति जो सदस्य है वो हर महीने उस पैसे को देगा और वो पैसा जब इकट्ठा होता रहता है तो वो उनकी एक राशि जमा पूंजी बन जाती
0: जी।
1: है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट स्वयं सहायता समूहों को लेकर के है वो ये है कि जो हमें एकदम से जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो हमें या तो अपने रिश्तेदारों या किसी से ब्याज पर लेना पड़ता है, लेकिन अगर स्वयं सहायता समूह हम लोग बनाते हैं तो अपनी सहायता जो हम स्वयं बोल रहे हैं वो अपनी सहायता हम खुद करते हैं जो पैसा हम लोग अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो ये एक समस्या रहती थी कि हमें पैसा एकदम से नहीं मिल पाता था वो हम अपने समूह से ऋण के तौर पर लेते हैं और वो जो ऋण जब हमने उसको अदायगी करनी है तो उसका ब्याज भी हम समूह के सदस्य मिलकर ही निश्चित करते हैं।
0: जी, इसमें सदस्यों की संख्या कितने से शुरू होनी चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए?
1: इसमें जो सदस्य हैं वे 15 से 20 ही होने चाहिए और ज्यादातर ये माना गया है कि जो महिलाओं का समूह है वो अलग बने और पुरुषों का समूह जो है वो अलग बने।
0: जी।
1: और दूसरी बात इसमें जो मुख्य है वो ये है कि जो हम हर महीने पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो भी पूरा सदस्य के मेंबर्स जो हैं सदस्य जो हैं उनसे पूछकर किया जाए, यानी कि हर महीने वो 10 रुपए देना चाहते हैं या 20 देना चाहते हैं या 100 भी दिए जाते हैं, लेकिन वो जो डिसाइड करना है वो सभी ग्रुप के मेंबर्स इकट्ठा होकर करें ताकि जो भी उनका आर्थिक स्तर है वो मिलता जुलता हो और वो आराम से उस पैसे को हर महीने दे पाए।
0: जी, तो इसमें जो है कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए ताकि समूह का कार्य चलता रहे, जैसे कोई पैसे का रखरखाव करे, किसको कैसे जरूरत देनी है, इसमें प्रधान उप प्रधान वगैरह इस तरह का कार्य?
1: जी, इसमें प्रधान भी होते हैं, उप प्रधान होते हैं और सचिव होते हैं या कैशियर जिसको ये लोग बोलते हैं।
0: जी।
1: तो जो पैसे का लेन देन है, हिसाब किताब, वो इनको अपने रजिस्टर्स बनाने पड़ते हैं, हर महीने मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, बैठक करनी पड़ती हैं जिसमें कि ये डिसाइड करते हैं कि पिछले महीने क्या कार्य किया गया और आगामी महीने में ये लोग क्या करने जा रहे हैं, और जो कुछ भी इनकी बैठक होती है, जो कुछ भी उसमें डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स इनको उस रजिस्टर में निकालनी पड़ती हैं। अब जो पैसे की बात मैंने की थी कि हर महीने ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, तो सबसे जो एक इसकी लाभ है ग्रुप बनाने का वो ये है कि आप लोग बैंक में जाकर के अपने ग्रुप के नाम का एक खाता खुलवा सकते हैं।
0: जी, पैसे की किसको ज्यादा जरूरत है ये ग्रुप निश्चित करता है कि किसको जो है पैसा दिया जाए?
1: जी, इसमें तो जरूरत पे डिपेंड करता है कि किसको जरूरत पड़ रही है पैसे की, लेकिन ज्यादातर हम लोग महिलाओं को इस उसमें मोटिवेट करते हैं कि उस पैसे को जो वो ऋण के तौर पर ले रही हैं उसे अपनी जरूरतों के लिए तो लें, लेकिन साथ साथ जो मेन कॉन्सेप्ट है स्वयं सहायता समूहों का वो ये है कि वो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसे किसी कार्य में लगाएं। यानी कि आज की डेट में अगर ये लोग 10,000 इनके पास हैं तो कुछ ऐसा कार्य करें कि वो 10 से 20 या 50 या लाख रुपए तक उसको पहुंचा सके।
0: जी, तो उसके लिए भी इस समूह में से पैसे निकाले
1: जी वो है तो उन्हीं का ही पैसा है, उन्हीं की जरूरतों के लिए है और उसे वो ले सकती हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन जो हम एक आज जो हम किसानों की इनकम को डबल करने की बात कर रहे हैं तो हमें ये लगता है कि स्वयं सहायता समूहों के थ्रू जो महिलाएं हैं वो अपनी जो आय उनके पास आ रही है उसे दुगना कर सकती हैं,
0: ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं,
1: बढ़ा सकती हैं।
0: जी, समूह जो है अच्छे तरीके से कार्य करे इसके लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए?
1: मापदंड तो यही है कि जो इन्हें हर महीने पैसा देना है वो रेगुलर रहे, जो भी महिलाएं इसकी सदस्य हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप्स में ये होता है कि औरतें या तो मीटिंग में ही नहीं आती हैं और या तो वो पैसे हर महीने प्रॉपर रेगुलरली नहीं देंगी, दो दो महीने या तीन तीन महीने इकट्ठा देते हैं। तो उसमें हम लोग यही सजेस्ट करते हैं जो ग्रुप लीडर्स हैं कि आप लोग कुछ फाइन रख दीजिए इसमें कि जिसने लेट दिया है उसको आप कुछ फाइन जब उस पे चार्ज करेंगे तो वो टाइमली दे देंगे।
0: जी।
1: क्योंकि जब पैसा एक नहीं देता है और तो दूसरे भी थोड़े ढीले हो जाते हैं और उससे क्या है कि पैसा रेगुलरली नहीं
0: संस्था की जो है कुछ गड़बड़ा जाती है।
1: जी, और उससे फिर ग्रुप्स जो है वो टूटने लगते हैं।
0: जी, तो अगर किसानों का ग्रुप है तो उस परिस्थिति में जो है क्या क्या मापदंड होते हैं? यही मापदंड होते हैं
1: जी, यही मापदंड रहेंगे, लेकिन वही बात आ गई कि ये डिपेंड करता है कि आप आगे कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए हम लोग बोलते हैं कि यदि वो कोई एक्टिविटी शुरू करना चाहती हैं तो हम उन उनको अलग तरह के कार्य सजेस्ट करते हैं, अगर पुरुष किसान है तो उनके लिए अलग तरह के कार्य हो?
0: जी, मसलन
1: जैसे महिलाएं हैं, मैं स्पेसिफिक तो नहीं करूंगी कि सिर्फ महिलाओं ने ही कार्य करना है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारी कांगड़ा की जलवायु अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फल और सब्जियां बहुतायत में उपलब्ध होती हैं, और जब सीजन है तो उस टाइम सस्ती भी रहती हैं। तो हम लोग ये औरतों को सजेस्ट करते हैं कि ऐसे में यदि वो ग्रुप में फल सब्जी परिरक्षण का कार्य करें, यानी कि अचार, चटनियां, मुरब्बे या फिर आपके अनाज हैं उनको सुखा करके सीरा, बड़ियां, सेवियां, इस तरह के उत्पाद बना करके अगर वो मार्केट में लेके जाती हैं और उन्हें बेचती हैं तो वो जो आय दुगुनी करने की हम बात कर रहे थे वो पॉसिबल है। क्योंकि मान लीजिए कोई किसान है, वो सिर्फ गोभी लगा रहा है, तो जब वो बेचते हैं गोभी तो वो 30-40 बहुत कम मूल्य मिलता है जितनी वो मेहनत है, लेकिन यदि वो उस गोभी का अचार बना करके बेच देते हैं तो वो जो मुनाफा हो रहा है वो एकदम से बढ़ जाता है। महिलाओं का काम ये हो सकता है इसमें कि जो बनाने वाला कार्य है, अचार बनाने की बात करते हैं, वो महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन जब मार्केटिंग में लेके जाना है या ट्रांसपोर्टेशन वाली बात आती है वहां पर वो काम हम पुरुषों को सौंप सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो कार्य है ये सुचारू रूप से चलता रहे, इसमें जो है लोगों की भागीदारी अच्छी से हो और उनका कार्य अच्छा चलता रहे, तो इसके लिए प्रशिक्षण भी आपका विभाग देता है?
1: जी, हम जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ सलाह नहीं दे रहे हैं किसानों को कि आप लोग ये काम करिए, हम उनके लिए प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन करते हैं, और मैं परिरक्षण की बात कर रही हूँ या इसे हम मूल्यवर्धन भी कहते हैं, तो इस तरीके के परीक्षण जो हैं वो हम डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से, मतलब उनको हम, मतलब वो अगर उन्हें चटनी बनाना के बता रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी नहीं, उन्हें प्रैक्टिकली वो चीज करके सिखाते हैं, और ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये हमारे केंद्र में भी दी जाती हैं।
0: यानी कि सभी कृषि विज्ञान केंद्र चंबा, ऊना और आपके जो कांगड़ा में जो है।
1: जी, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनका ये मैंडेट है कि हमारे को प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना है, चाहे वो केंद्र पर हो या वो केंद्र के बाहर रहे। तो ये जब ट्रेनिंग्स हम ग्रुप्स को दे रहे हैं उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप भी हम उनके साथ रखते हैं कि मतलब वो इसका कोई यूनिट चलाना चाहते हैं तो उसमें भी हम पूरा सहयोग करते हैं।
0: और साथ में जो है कुछ अगर उन्होंने पदार्थ बनाए हैं तो उसमें बेचने के लिए भी आपका विभाग कुछ करता, उनको मदद करता कुछ?
1: उनकी मदद इस तरीके से की जा रही है जैसे कि हम लोगों के कोई किसान मेले होते हैं
0: जी,
1: तो जितने भी ग्रुप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनके जो भी उत्पाद वो लोग बना रही हैं उनको वहाँ एग्जिबिट भी करते हैं, प्लस उनकी सेल भी की जाती है। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट्स करवाए जाते हैं, भ्रमण कराए जाते हैं, ताकि और जिलों में जो इस तरीके की औरतें काम कर रही हैं उनका क्या तरीका है, वो कैसे मार्केट कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोजर विजिट्स भी हम उनको करवा रहे हैं। प्लस जो आपके ये कुल्लू का दशहरा है या चंबा में मिंजर मेला है, यहाँ पर भी हमारे जो ग्रुप्स हैं वो लेकर के सामान अपना लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे पब्लिसिटी तो उनकी हो रही है। तो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो तो घर से भी बेच रही हैं, मतलब अब इतना नाम हो रहा है कि लोग उनके पास खुद पहुंच रहे हैं,
0: उनका नाम ही चल रहा है।
1: जी,
0: तो बहुत अच्छी बात है जी, अगर हमारे किसान भाई और महिला किसान जो है इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है कि उनकी आमदनी में जो है इजाफा हो रहा है। तो मेलों में जो है जैसे कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ एक स्टॉल मिलता है, महिला किसान या किसान जो है बहुत होते हैं, उस परिस्थिति में उनको माल बेचने में काफी असुविधा भी होती है, हमने कई मेलों में देखा है।
1: असुविधा तो है, लेकिन हमारा मोटिवेशन ये उनको हमेशा रहता है कि सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि हम उनको राह दिखा रहे हैं। एक बार हम उनको राह दिखा रहे हैं, आगे उनको अकेले ही चलना पड़ेगा। तो ये जो एक तरीका है जो हम उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, वो उनको एक तरीका है कि इस रास्ते पे आपने चलना है, अगले साल उनको खुद ही वो काम करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि फॉलो अप है जो उनको बताना है कि अगर यूनिट एस्टेब्लिश हो गया है कोई, उसके बाद जो मार्केटिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें लेबल्स होने चाहिए, वो सारी चीजें जो है मतलब वो A to Z हम उनको उनके साथ चल करके उनके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, एक बात रहेगी, जो आप प्रशिक्षण देते हैं कितने दिनों का होता है, जैसे अचार बनाने का, चटनी बनाने का, तो कितने दिनों का होता है
1: ये? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो परिरक्षित पदार्थ हैं चाहे फल के हों या सब्जियों के, बहुतायत में उपलब्ध हैं। आजकल आप मार्केट में जाएंगे आपको जैम, जेलीज, अचार, चटनियां, मुरब्बे, कैंडीज, मार्मलेड्स, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। तो जब आप मार्केट में उतर रहे हैं तो आप सिर्फ एक उत्पाद के साथ नहीं जा सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि यूनिट शुरू करना है तो ये सारे उत्पाद हमें सीखने पड़ेंगे और हमें बनाने भी आने चाहिए। तो ट्रेनिंग जो है वो डिपेंड करता है, कई बार हम 5 दिन की भी रखते हैं, 7 दिन की भी रखते हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ उस ट्रेनिंग पे ही नहीं खत्म करना पड़ता है, आगे इन जो, क्योंकि खाने की चीजें हैं तो इसमें परफेक्टनेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के ये खाने के के काम में आएंगे, तो
0: पदार्थ की अगर उत्पाद का जो है क्वालिटी होगी उसमें तभी जो है उसकी मांग होगी। अगर उसमें जो है कुछ गुणवत्ता जो है नीचे स्तर की होगी तो उस परिस्थिति में जो है कोई उसको लेगा नहीं। जी, तो उसके लिए जो है कैसे आपके पास इनरोल करवा सकता है, कैसे आपसे

0: वर्क साध सकता है।
1: वो अपने जैसे ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप के जो प्रधान हैं वो एक हमें एप्लीकेशन लिख करके हमारे केंद्र में दे सकते हैं।
0: तो उसमें जो जब भी आपको
1: जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम, तो हम उनको कॉल कर लेते हैं, उसमें वो अपना पूरा पता लिखेंगे, किस विषय पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्लस अपने कॉन्टेक्ट नंबर
0: जी। तो इसी तरह से अगर जो है कोई पुरुष किसान जो है कोई उत्पाद बनाना चाहता है या फसल वृद्धिकरण की तरफ अपने कदम आजमाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में जो है उसका समूह जो है उसकी कैसे मदद करते हैं आप?
1: ये ट्रेनिंग्स मतलब ऐसा है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो विभिन्न जो हमारे विषय हैं उन्हें पर ट्रेनिंग्स देते हैं। तो आप फसल विविधीकरण की बात कर रहे हैं या सॉइल टेस्टिंग की हम बात करते हैं या केंचुआ या मशरूम खून उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो वो इसी तरह से अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे केंद्र पर दे सकते हैं। तो उसके उपरांत हम देख लेते हैं कि जब जब ट्रेनिंग्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो या तो हम उनको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं या कई बार विभाग वाले भी बुलाते हैं हमारे थ्रू, तो हम वैसे भी ट्रेनिंग्स जो हैं वो उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके दे देते हैं।
0: जी, अक्सर ये होता है कि खुम्ब की खेती में जो है उसकी जो कंपोस्ट बनानी होती है आम आदमी नहीं कर सकता है, एक जो किसान है वो उसके लिए बस की बात भी नहीं है, तो उसकी कंपोस्ट दिलाने में भी मदद करते हैं, उसको भी सिखाते हैं आपकी कैसे बनाई जाए इसकी?
1: इसकी ट्रेनिंग जो बटन मशरूम की है वो हमारे जो यूनिवर्सिटी है चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उसकी ट्रेनिंग वहां पर होती है। केंद्र के माध्यम से भी हम जो है डिंगरी मशरूम उसकी ट्रेनिंग जो फार्मर्स को 5 दिन की या 3 दिन की जो है वो हम उनको उपलब्ध करवाते हैं।
0: जी, अगर हमारा किसान भाई जो है इस तरह से सीख लेता है और साथ में जो है सही जगह पे अपना उत्पाद बेचता है तो उसको जो अच्छी आमदनी हो सकती है।
1: जी,
0: तो अभी तक आपने कितने ग्रुप्स बनाए हैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में?
1: देखिए, ग्रुप्स तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ग्रुप्स बना रही हैं, जैसे कृषि विभाग भी बना रहा है,
0: आत्मा परियोजना
1: भी बना रही है, जाइका प्रोजेक्ट आया है जापान का उसके अंतर्गत भी बन रहे हैं और हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग उस राह पे चल रहे हैं थोड़ा सा कि जो ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं एक तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरा अपना अनुभव रहा है उसमें ये प्रॉब्लम है कि ग्रुप्स तो बहुत सालों से बने हुए हैं लेकिन जो उसका उद्देश्य है वो महिलाओं को ज्ञात नहीं, वो लोग सिर्फ आंतरिक ऋण तक ही सीमित हैं, और जो मैंने शुरू में कहा कि उनको इनकम जनरेट करनी है, आय उपार्जन करना है, उससे वो अनभिज्ञ है अभी तक। तो हम ये उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि जो ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनका फॉलो अप हो, उनको मार्केटिंग तक लेके जाए और फिर वो उस माध्यम से
0: सफलता की ऊंचाई जो है छूती रहे।
1: जी,
0: साहब, आपने स्वयं सहायता समूह के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। किसान साथियों, तुहां ये भेंट वार्ता सुनी कने इस विच दिखा कितनिया कम्मे दियां गल्लां तुहां तक पुजियां, कने तुहां जरूर इन्हां ते फायदा लेना है
3: जी।
2: इस ते बाद पंच होरां फिरी लगे न अपने पटारुए से परोलना
3: जी। तो हुण हां चलना कांगड़ा सब्जी मंडी दी तरफ, और अज दे जिहड़े उत्थों दे सब्जी दे भाव ने कुछ इस तरह न। सब ते पहले गल करिए आलू दा, आलू 10 ते 22 रुपए प्रति किलो, प्याज 48 ते 55 रुपए प्रति किलो, टमाटर 30 ते 36, लसुण 200 ते 230, अदरक 70 ते 80, शिमला मिर्च 65 ते 70 रुपए प्रति किलो, अरबी 28 ते 30, खीरा 35 ते 45, मटर 180 ते 200, फुल गोभी 50 ते 55, बंद गोभी 25 ते 30, बैंगन 22 ते 25, कद्दू 15 ते 35, और मूली की गल करिए 20 ते 25 रुपए, गल करिए पालक की तो पालक 40 ते 45 रुपए प्रति किलो, हरी मिर्च 60 ते 70, धनिया 100 ते 150, तोरी 20 ते 22, भिंडी 25 ते 30, घिया 20 ते 30, करेला 25 ते 30, फ्रास बीन 50 ते 60 रुपए प्रति किलो, गाजर 30 ते 35, मशरूम 160 ते 170, गंडियाली 25 ते 30 रुपए प्रति किलो, कन्ने सरसों का साग 50 ते 55। इसके बाद हाँ गल करिए फलों की, तो फलों च सेब रे अज 40 ते 110 रुपए प्रति किलो, केला 40 ते 50 रुपए प्रति दर्जन, अनार 120 ते 180, अनानास 40 ते 45, अमरूद 130 ते 140, पपीता 50 ते 60, संतरा 90 ते 100, कने नींबू की गल करिए 140 ते 145 रुपए प्रति किलो, नाशपती 50 ते 70, जापानी फल 70 ते 100, कीवी पर पीस 40 ते 45, कने माल्टा जिहड़ा से 190 ते 200 रुपए प्रति किलो दे हिसाबे ने अज कांगड़ा सब्जी मंडी च रहे न
2: जी। तो दिखा पंच होरा तुहां वल फलां कने सब्जियां दे सारे थोक भाव बड़े बांके तरीके ने पुजाए न, कने अहां उम्मीद करनी है भी जिहड़े अहां दे किसान बागवान फलां सब्जियां दा कोई काम करदे न या दुकानदार इन्हां कार्यक्रमां जो सुणदे न, तिन्हें भी पता होना चाहिए भाई इस वक्त जहां कांगड़े की गल करिए इत्थों कांगड़ा विच सब्जी दे थोक भाव क्या चले न।
3: हां जी,
2: तो पंच जी दिखा थोड़ी देर गल अपने श्रोतियां ने मौसम दी भी कर लिए।
3: बिल्कुल,
2: मौसम इयां ता बड़ा बांका है कि जो कि 2-3 दिन पहले ता हल्की फुल्की वर्खा हुई।
3: हां जी,
2: कने वर्तमान दी गल करिए इस वक्त

0: मौसम साफ कने सुहावना है, पर जे पहाड़ी इलाकों की गल करिए ते तुसन जा ब्यागा थोड़ी ठंड होगी हो,
1: हाँ जी
0: कने आह का जो इलाका है तू दिन दिन तरह की गर्मी,
1: हाँ जी
0: कने थोड़ा संझा वक्त हो जाती ठंड माड़ी, पर फिर भी मौसम लगभग साफ सुथरा ही है।
1: बिल्कुल, यानी कि थोड़ा बोलने का मतलब है कि एक दो दिन जेड़े से हम मौसम जेड़े से साफ ही रहना 2-3 दिन तक, तो
0: जी
1: हाँ अपने खेतीबाड़ी दे काम कार जेड़े से
0: करी
1: आराम
0: सकदे
1: में करने करी सकते हैं।
0: जी। ता इस ते बाद फिरी ते चलना है आह लोग झनकार दी तरफ, ता वह सुनते ने मिठा दिया प्यारा दिया लोक गीत।
1: जी

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने कड़िया सुइयां बोला दियां बे हुण कार्यक्रम जो इत्थों ही विराम दिया ता जाने ते पहले तुहें दसी दे कार्यक्रम प्रस्तुत करता जतिंदर पाल सिंह
1: कने तकनीकी सहयोग रिया सुरेंद्र कपूर और अदा हुण अपने ट्याले दे सदस्य पंच जो
0: कने शन्नो ताई जो दिया अनुमति
1: अच्छा जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। के समाचार, प्रदेश में मॉनसून के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ने लिया जायजा, रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा मुआवजा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 64 करोड़ 82 लाख रुपए की दूसरी किश्त की जारी। पद्मश्री नेकराम शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटे अनाज को बढ़ावा देने के प्रयासों में कर रहे सहयोग। और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का तियारा गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय टीम ने आज कुल्लू जिला के मनाली, बंजार और आनी क्षेत्रों के विभिन्न आपदा प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुडू के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं, भूस्खलन प्रभावित गांवों और अन्य क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का जायजा लेकर नुकसान का आकलन किया। एम रामचंद्रुडू ने बताया कि केंद्रीय दल ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, ताकि नुकसान की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से नुकसान की समग्र रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम उसका आकलन करेगी और फिर राहत सहायता के संबंध में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजेगी।
1: भारत सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन किया है। हम लोग चंबा, कांगड़ा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह में जाके हम लोग जहाँ डैमेज हुआ था वहाँ हम लोग देखा है और असेस किया है। वो डिटेल्ड रूप से जो डैमेजेस हुआ है डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट फील्ड्स में, जो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से जब मेमोरेंडम देगा, हमारा टीम विल एग्जामिन द प्रपोजल्स जो डैमेजेस हुआ है और जो हम लोग जो साइट्स में देखा है उसको भी ध्यान में रखते हुए स्टडी करके हम लोग रिकमेंड करेंगे भारत सरकार को।

0: प्रदेश में मॉनसून के अंतिम चरण में हुई भारी बारिश के कारण लाहौल स्पीति और किन्नौर समेत कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस बार मॉनसून में राज्य में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए कुल्लू, चंबा व कांगड़ा जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की मार से इस बार हिमाचल में सेब की फसल में भारी गिरावट आई है और अभी तक करीब 1,14,00,000 सेब की पेटियां बाजार में पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल करीब 3 से 3.5 करोड़ सेब पेटियों की बंपर फसल हुई थी, जो कई वर्षों में सबसे अधिक थी।
1: अभी जो मॉनसून की आखिरी जो बारिशें हैं, इस बार कोई 3,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस बरसात के अंदर हुआ है और ये प्रक्रिया है केंद्र की टीमें जब इस किस्म के नुकसानों का हम मूल्यांकन करके भेजते हैं तो वो भी आके इसका अपने लेवल पे चेकिंग करते हैं। पिछले कल वो धर्मशाला और आज मनाली के उधर इलाके में गए हैं। जो 23 का जो मूल्यांकन था हमारा, जो 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान था, उसके एवज में कुल 2,500 करोड़ देने का केंद्र ने जो है बात मानी। 2,500 करोड़ में भी 500 करोड़ तो हमें देना है, तो 23 का पैसा अब शुरू हुआ है। सेब में काफी ज्यादा गिरावट हुई है, अभी तक 1,14,00,000 पेटियां ही मार्केट में आई है, जब पिछले बार इन्हीं दिनों में कोई 1,76,00,000 पेटियां मार्केट में थी। और जो हम मंडी मध्यस्थता के तहत जो सेब लेते हैं उसमें भी भारी गिरावट है।
0: हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 64,82,00,000 रुपए की दूसरी किश्त जारी कर दी है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस धनराशि के माध्यम से प्रदेश में कृषि से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ भी उपलब्ध होगा। कृषि मंत्री ने हिमाचल में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसानों की आय में वृद्धि और पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार से लगातार सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। चंद्र कुमार ने कृषि अनुसंधान और विकास पर अधिक निवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि अनुसंधान और विकास के लिए संसाधनों में और वृद्धि करने का आग्रह भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार, 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित

0: भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे श्रीअन्न यानी मोटा अनाज के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के नांज गांव के किसान पद्मश्री से सम्मानित नेकराम शर्मा प्रधानमंत्री के प्रयासों को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। आकाशवाणी शिमला से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे पिछले 36 वर्षों से 9 तरह के मोटे अनाज बिना किसी रासायनिक उपयोग के उगा रहे हैं।
1: 1990 से ये शुरुआत हो गई थी और 2023 में मुझे जो पद्मश्री जो सम्मान से सम्मानित किया भारत सरकार ने, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब हम मिश्रित खेती करेंगे, 9 अनाज खेती करेंगे जिसमें दलहन तिलहन ये सब चीजें होंगी, अनाज होंगे, तो मिट्टी में अपने आप ही उसमें आच्छादन होगा। जब उसमें आच्छादन होगा, डायरेक्ट सनलाइट उसमें नहीं पड़ेगी तो उसमें नमी रहेगी, इस तरह से उसमें पानी का भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 अनाज खेती को हमने करना शुरू भी किया, लोगों ने अब दोबारा से करना शुरू किया, अब उसको अच्छे से लोग कर रहे हैं।
0: स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज को लाभकारी मानते हुए लोग इनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
2: ये जो मोटे अनाज है ये बहुत ही फायदेमंद है, मैं खुद यूज कर रही हूँ जी। से रागी का आटा, कोदे का आटा, जौ का आटा, ज्वार का आटा बहुत ही अच्छे हैं बच्चों के हेल्थ के लिए, बुजुर्गों के हेल्थ के लिए ये जी बहुत ही अच्छे हैं। और आजकल तो ये दलिया, ओट्स ये सब आ रहे हैं और बच्चों को वेजिटेबल के साथ मिक्स करके हम दे रहे हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं ये। और मैं तो सबको यही बोलती हूँ, जितना हो सके ये मोटा अनाज आप खाना शुरू कर दो।
0: पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। मेजर मनकोटिया का कल सुबह निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। लाहौल स्पीति जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाशूर मॉनेस्ट्री के समीप लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर विकसित पैराग्लाइडिंग साइट का सफल ट्रायल किया गया। सफल ट्रायल से स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह है। साइट के निरीक्षण के दौरान एसडीएम केलंग कुनिका एकर्स, पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर गिमनर सिंह सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। कुनिका एकर्स ने बताया कि इससे लाहौल में साहसिक पर्यटन को मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मॉनसून के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ने लिया जायजा, रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा मुआवजा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 64,82,00,000 रुपए की दूसरी किश्त की जारी। पद्मश्री नेकराम शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटे अनाज को बढ़ावा देने के प्रयासों में कर रहे सहयोग। और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का तियारा गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा विभाग में रोजगार कार्यालयों यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के माध्यम से बैचवार यानी बैच वाइज आधार पर मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड 2 के 18 पदों को भरा जाना है।

0: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को भेजे। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से है, सामान्य वर्ग के लिए 9 पद, सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस के 1 पद, सामान्य वर्ग WFF का 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 5 पद और अनुसूचित जनजाति के 2 पद, यानी कुल 18 पदों को भरा जाना है। आवश्यक योग्यता इस प्रकार से हैं, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से विज्ञान यानी साइंस विषय में 10.2, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान से BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंस या फिर BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेटरल किया हो। इन योग्यता के लिए हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। किसी भी कारणवश प्रायोजक एजेंसियों से नामों की प्राप्ति में देरी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यह मांग पत्र विभागीय वेबसाइट यानी www.hphealth.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगा। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं साबरकोटी के गाए इस पंजाबी गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हंस राज हंस का गाया पंजाबी गीत।

भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गई गजल अभी आपने सुनी। सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए बोलियां ते माहिया।

सुरिंदर कौर और राशा सिंह मस्ताना के गाए इसी पंजाबी गीत के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में हकीकत फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीत मदन मोहन का था।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa. गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
4: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
5: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
4: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
6: देशभक्ति की किताब सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में लीडर फिल्म का ये गीत।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ एट 9 रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इंप्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य

0: कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चुनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंस

कुलवंत जानी हिंदी सिने जगत के जाने माने गीतकार, कहानीकार, पटकथा लेखक और संवाद लेखक थे। उनका पूरा नाम कुलवंत सिंह जानी था।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
5: एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार कुलवंत जानी पर। कुलवंत जानी का जन्म 14 जुलाई 1940 को पंजाब में हुआ था। कुलवंत जानी ने 60 से अधिक फिल्मों के लिए लगभग 170 गीत लिखे। ज़्यादातर उन्होंने संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के लिए गीत लिखे। गीतों के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए कहानी, पटकथा और संवाद भी लिखे।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just ₹6.75 lakh.
0: Yes, ₹6.75 lakh, valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: गीतकार कुलवंत जानी 1970 से 1990 के दशक में सक्रिय रहे और कई यादगार गीत लिखे। दरार फिल्म के लिए उन्होंने पहला गीत लिखा। ये फिल्म 1972 में आई थी। कुलवंत जानी ने दादा, अरमान, ईमानदार, सूर्यवंशी, मोहब्बत की कसम, हमराही, पापी, एक बार कहो जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे। 30 सितंबर यानी आज के दिन वर्ष 2000 में उनका निधन हो गया।

इसी गीत के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार कुलवंत जानी पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय है रिली किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी। आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी, SIR की इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत ऊहापोह में है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है।
4: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है, तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है। और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में हुआ था, उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर जाए है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं, तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन का मशीनरी सब SIR की पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं। तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्र में, ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है। और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं, चाहे BLO हो, ERO के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी, मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है, और इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गांव हिसाब से देखा गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है, जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी, और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करके अगर नोटिस गया है तो उनके पास BLO जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेके आएगा, यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये स्पेशल समरी रिविजन या एनुअल रिविजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है, यह एक एन्यूमरेशन एक प्रक्रिया है, तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है।
2: बिल्कुल,
4: क्यों नहीं करें हम?
2: कहा, और देखिए मैं भी दिल्ली का मतदाता हूं और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 मतदाता और 4 को नोटिस आया है, तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था, लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल अशोक जी से है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
3: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
2: जी।
3: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे, फिर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी, बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूं, जब बलराज मदोक उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल विपक्षी दल खासतौर से जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं, विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे, बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन उमेश जी मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूँ कि चुनाव आयोग जो है जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस भ्रष्ट भूमिका में अगर हम बात करें जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में 2 चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की, और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे। अब सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की। जब बांकेपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है
2: जी।
3: तो कहा गया नहीं नहीं ये तो इन्होंने जानबूझकर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने, यानी कभी भी तुझ भी मेरी पट भी मेरी। तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं। तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी।
2: बिल्कुल।
3: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गर्मा रही है, वो इसलिए है कि इसमें 2 कारण हैं। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से किसानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं, और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया, क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथाकथित धांधली, उसमें भी सभी

0: दल नहीं आए हैं, यानी
1: बिल्कुल
0: विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है, और समय समय पर सरकारें बदली हैं, और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी
1: जी
0: डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है, और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो, अगर
1: जी
0: मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है, और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है, और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अक्षय जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था, जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ECI नेट नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बचाऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि BLO नहीं, AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना, ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप AERO को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है, उसका जो दाखिला करने की जो उपाय है, तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है, वो CEO के पास भी नहीं होता है, चीफ
1: जी
2: इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर DG या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले, जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया, उनका स्पष्टीकरण दिया है। बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन, उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमेटी वमेटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है। फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से, कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, कि कोई इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया।
1: जी
2: दूसरी बात है कि राजनीति इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का, हमारा जो ये एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन, इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन, तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा। ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी, मैं सोच रहा हूँ इन दिनों ये सारे जो चीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है, वो जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में, वो लोग सरकार में है, और जो विपक्ष में है उनका, और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व तो बनता है। ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है,
1: बिल्कुल
2: लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके, सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे, कुछ ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है, जैसे बार बार जान

0: के लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो, और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो। अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपेंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं। कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके नर्चर करके रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है। बाकी बातचीत होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला उसमें 4-5 आम नागरिक आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है और ऐसे भी लेना चाहिए। ये बात नहीं कि ये उनका दायित्व तो है।
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं वो सुधार या तो न्यायपालिका के पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं। जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस वो मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना या फिर उनके पूरे एसेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
2: देखिए, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने भी लाए। और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। तो मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है। अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर है तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं। लेकिन जब लोग, देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरला में सरकार बदली। तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो

0: अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें, लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है। तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें है खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम।
1: जी
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें। तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते, या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, ना कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ें, और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें, और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो ये एक मुद्दा है। लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई, क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया है और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस, हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए। तो कई और राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोटने सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा SIR का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं, और इससे बचना चाहिए देश को।
1: SIR को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन, और उसका आधार है इलेक्शन की, और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
2: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए, और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए। मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम रहने देना चाहिए, और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोला, जैसा यार नहीं बोलकर और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था, उसमें भी करना आवश्यक है, लेकिन थोड़ा SIR जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है ये हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है क्यों, एक बेस फिर से शुरू होता है, अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है, और SIR में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है अभी, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था। ये SIR का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा, इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं, हम और SIR के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी, शायद पिछले ही हफ्ते की थी, कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा जो 18 साल के हो चुके हैं,
2: वो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा।

0: है कि जैसे पहले होता था स्वीप के अंदर एक सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था यानी इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं उनको सबको जोड़ना चाहिए। और शायद आपने जैसे कहा उन्होंने इसको अभी कैंपेन मोड पर लेंगे। अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें SIR में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शंस होगा। लेकिन आप SIR को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है और SIR के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार SIR करना जरूरी है क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है। उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है, पिटीशन देने का लेवल ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं तो आप DEO के पास जा सकते हैं, CEO के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए क्योंकि जैसे बताया जाता है ना एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है। अगर एक जो वैध आदमी जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका किसी मनीषा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में इसे स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
1: मैं अक्षय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है लेकिन अगर घुसपैठिए हैं जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, हम लोगों के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता को क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है अगर हम लोगों के बीच में कोई भी रहता है चाहे 10 साल से 20 साल से 50 साल से लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
2: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी कि जो पूरी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता है जो घुसपैठिए हैं विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं जो नागरिक नहीं है, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूँ उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी SIR प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी वजह से उसका नाम जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं उनको कैसे रोकना है, ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी जिसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
2: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से एशियाई खेल 2026 में
1: बहुत बहुत पुराना है। उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है।
0: दैनिक आकर्षण पर आधारित कार्यक्रम रिलीज किया जाएगा
1: और अब ये खेल पूरा व्यवस्थित रूप लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, 2 मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया, लेकिन आज कंपाउंड की 3 स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। 3 स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
2: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानी पार्थी और प्रीतिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानी पार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबरी पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की 3 टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
1: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था, नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा। अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का 4th स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
3: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में यह भारत का 3रा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे।
1: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कायनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी, आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
4: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा 3रा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द कैंप्स एंड इन द प्रेपरेशन टू द गेम्स दैट एवरीबडी इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा

0: एफर्ट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो पॉजिटिव आएगा।
1: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण के साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया। पहला गोल इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज झन्नाटेदार शॉट लगाया जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए जबकि कोरिया को 3 मिले और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है एथलेटिक्स शूटिंग और कुश्ती के बाद। पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य। तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
2: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई। वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीब बुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
1: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदर पाल सिंह संधू, दीपिका पलिक्कल की विरासत नई पौज ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वाश के सितारों की कहानी।
2: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का। चोटरानी ने 3-1 से जीत कर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध। दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा 6-6 की बराबरी पर, उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से

0: हार गए, लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की टाइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिन से हार गए थे 3-6, 4-6 से, लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दोनों ने पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
1: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गयी।
0: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
1: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गईं। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताखी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
0: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
2: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेन्स टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 6ठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधु 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर है। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
0: और अब बारिश से पक टाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश युमनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
0: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भाजने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
3: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ 5वें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ 4थे स्थान पर रहीं। दोनों इसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ 3रे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ 4था स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड

0: से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्त ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रहीं, लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाईं। किनों में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
1: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
2: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय सिनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: मुदिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
3: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
4: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के 2 बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी 4 क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम, जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से, जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे। सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग, जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
1: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में लीजिए सुनिए आशिकी फिल्म का ये गीत।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ ऐसे नगमे जो सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं, सीधा रूह को छू जाते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भूपेंद्र सिंह के गाए इस गीत के साथ। ये गीत हमने लिया है घरौंदा फिल्म से।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में घरों दा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीत जयदेव का था।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये आंसू भी दिल की जुबान होते हैं, होंठ खुले ना खुलें, जुबां कुछ कहे ना कहे, आंखें दिल का दर्द बयां कर ही देती हैं।

यादों की ये घने बादल छंटते ही नहीं। ये मौसम वो है जो कभी बदलता ही नहीं। बीते दिनों की हर याद कभी दिल से जुदा होती ही नहीं।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

तन्हा रात, चांद की मध्यम रोशनी और एक लंबा इंतजार। न जाने कितनी रातें यूं ही जागते गुजर गईं, लेकिन इंतजार ऐसा जो कभी खत्म न हुआ, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया।

0: अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support price